0: Welcome back. Tracking the latest updates coming in from Maharashtra's Pune, where the death toll from consuming poisonous liquor has now risen to unfortunately 18. An FIR has been filed. And the supplier, Yogesh Vankade, the key accused in the case, has also been arrested. Authorities confirmed that the liquor was contaminated with toxic methanol. The excise department has conducted raids at three locations in connection with this case. Authorities also are on the lookout for the owner of the distillery and have sealed the location where the victims consume the poisonous liquor.
1: ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. इसमें तुरंत आठ लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है. इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है. हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है. मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे.
2: अब तक एक्साइज और पुलिस विभाग ने आठ लोगों को काबे में लिया है. इन्वेस्टिगेशन शुरू है. इन्वेस्टिगेशन में डिटेल जैसा आएगा वैसा वैसा तपास आगे जाएगा. आठ लोगों की मौत हुई है और तीन लोगों के उपचार चालू है. आठ लोगों को ताबे में लिया है एक्साइज और पुलिस विभाग ने पांच लोगों को ताबे में लिया है. एक्साइज ने तीन लोगों को ताबे में लिया है.
0: And with that, it's a wrap on this edition of Breaking Ground. I'll be back in moments from now with Breaking Ground at 1 p.m. Stay tuned.

0: call their keen on two deputy posts is what we're hearing, of which one should, according to sources, go to someone from the backward community, from the OBC community, from the Dalit community, because that's what Rahul Gandhi wants. He wants a young and dynamic cabinet as well. What are you picking up?
1: Yes, the main focus is to make a team so who can deliver a victory in 2028 assembly election. And for that, Congress leadership is especially focusing on the social equation, especially the Ahinda political formation, which includes OBC, SC, ST and minority communities. It is a clear instruction.
2: के लिए वो रास्ते तलाश रहे हैं, सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, और इन्हीं सवालों के सीधे जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला है, लेकिन ये कठिन घड़ी है छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि किन तनाव से एक छात्र का पेरेंट और एक छात्र खुद गुजर रहा हो। OSM को लेकर तमाम बातें कही हैं और मैं शुरुआत उसी से करूँगी कि इस वक्त OSM एक ऐसा मामला है, जो एक ऐसे पड़ाव में छात्र है जब अपने करियर की उड़ान वो भरने वाला है, यूनिवर्सिटी का दाखिला है, कॉलेज का दाखिला है, अब वो क्या फेरे में पड़ा है, वैल्यूएशन जो हो रही है, रीवैल्यूएशन जो हो रही है, ऐसे में ऐसे अभिभावकों को, छात्रों को अभी आप क्या कहेंगे?
3: देखिए, मेरे दायित्व, मेरे समवेदना, मेरे सिंपैथी विद्यार्थियों की एंग्जायटी के साथ है। मैं उस विषय में देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के नाते मैं खुद को जवाबदेही मानता हूँ। हमारे दायित्व है इसकी, उस तनाव में कैसे बच्चों को निवृत्त करना, कैसे उनको रिलीफ देना। आपने OSM के बारे में पूछा और उसमें OSM एक बाधक इस प्रकार के आपने एक चित्रण किया। देखिए, हर एक साल परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद रीअसेसमेंट की मांग होती है, उसकी व्यवस्था भी है, हर एक साल रीवैल्यूएशन भी होती है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। जो रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया थी वो डिजिटली होती थी। विद्यार्थी अपने प्रश्न लिखने के बाद, परीक्षा वैल्यूएशन के बाद जब उनकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर सहमत नहीं होती है, वो अपना अधिकार है, वो जाके दोबारा पूछे कि भाई मेरे इसमें क्यों कम नंबर आया। उसकी एक प्रक्रिया, वो डिजिटली होता था, इस बार भी डिजिटली हो रहा है। उसकी पहले इस बार एक नया चीज़ किया CBSE ने, इसकी जो इवैल्यूएशन होता है परीक्षा पत्र की, प्रश्न पत्र की, वो पहले मैनुअली होता था, उसी जोन के अंदर होता था। थोड़ा इसमें भी 50 प्रकार की कंप्लेन आती थी, हमको कम नंबर आया, हमको थोड़ा पार्शियल हुआ, उस विषय में थोड़ा ऐसे हो गया। इसको OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग एक नया प्रैक्टिस है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्रैक्टिस है। ये अनेक इंस्टीट्यूट उसको अपनाए हैं, विश्व की एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। CBSE ने अपने रिफॉर्म के नाते उसको अपनाया है। अभी मैं आपको कहूँ, 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उनमें से 13 लाख विद्यार्थी लौट के आए नहीं कि मैं मेरे नंबर पे डिससैटिस्फेक्शन में रहा है, वो आए नहीं, आए 4 लाख। हर एक साल आते हैं 2-2.5 लाख हर एक साल विद्यार्थी, पहले भी आते थे कि मेरे नंबर पे कुछ विषय है, उसको थोड़ा दोबारा देख लिया जाए, और CBSE उसको देखता था। इस बार उसकी संख्या बढ़ के हो गई 4 लाख। इसकी एक प्रमुख उसमें क्यों ये ओहोपोह की स्थिति हुई, उन्होंने जब विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहले भी होती थी, इस बार भी एप्लीकेशन किया, वो पोर्टल जितना तंदुरुस्त होनी चाहिए था, जितना मजबूत होनी था, वो नहीं था। CBSE ने उस पोर्टल को सफलता से चला नहीं पाया, इसके कारण उसमें एक ग्लिच हुई, उसमें क्रैश हो गया, 2-3 दिन की थोड़ा गड़बड़ी हुई, जिसके कारण बच्चों में थोड़ा नाराजगी भी बढ़ी। यह विसंगति को ठीक कर लिया गया है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है, 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी एप्लीकेशन किए कि हमको रीअसेसमेंट करना है, रीइवैल्यूएट करना है। उसमें से उन्होंने 11 लाख क्वेश्चन सेट्स मांगा, ये सब लगभग विद्यार्थियों के पास पहुंच गया है। अभी उस पोर्टल को हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं, उसमें IIT की टीम लगा है, नया पेमेंट गेटवे के लिए नया PSU बैंक को इन्वॉल्व किया गया है। ये सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों में। फिर जब नया पोर्टल ऑन हो जाएगा, इसमें फिर बच्चे जिनके पास कॉपी पहुंच गया है, वो आएंगे, मेरे पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ये मेरा क्वारी है, या मेरा ये मिसिंग पेज हो गया या मेरा ये विसंगति हो गया, ये सारे अभी फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, पहले भी करते थे, इस बार भी करेंगे।
2: हमारे इट्स मंथ से टीवी के जरिए आप इस वक्त जो पेरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको किस तरह से आश्वस्त करेंगे, कितने और दिन में उनकी जो शिकायत है रिवैल्यूएशन को लेकर वो दुरुस्त हो जाएगी और वो वापस उस पोर्टल में अपनी जो शिकायतें दर्ज करा पाएंगे? क्या CBSE इसको लेकर कोई टाइमलाइन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज के एप्लीकेशंस भी उन्हें भरने हैं?
3: देखिए, हमें ध्यान है, CUET अभी अभी खत्म हुई है, अभी अभी CUET के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आना बाकी है, JEE एडवांस की रिजल्ट 1 तारीख को आएगा। ये दोनों बड़े एग्जामिनेशन को हम 12th के रिजल्ट के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। JEE एडवांस की टीम को बताया गया है और CUET की टीम को भी बताया गया है कि आप इसको इसके साथ सिंक्रोनाइज करो, 12th की रिजल्ट आने के साथ हो, कैसे जिससे बच्चों का नुकसान ना हो, ये तीनों को हम सिंक्रोनाइज करेंगे, ये एक बात है। दूसरी, अभी जो अभी जानकारी था, 29th को CBSE ने पोर्टल खोलने के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोलने के लिए डेट घोषणा किया था। अभी अभी मेरे को जानकारी आई है, उसमें मैंने कल खुद गया था अभी CBSE इसको देखने के लिए कि अब पोर्टल रेडी है क्या
2: जी।
3: वो पोर्टल रेडी होने में और कुछ समय लगेगा, कल शायद कल तक हो जाएगा जब हम फुल प्रूफ हो जाएंगे। पिछले दिनों में जैसे ग्लिच होके 3-4 दिन एक कमोशन हुई, वो ना हो इसलिए फुल प्रूफ पोर्टल के लिए कोशिश किया जा रहा है, सारे टेक्नोलॉजी के लोग लगे हैं उसमें से, मैं आश्वस्त हूँ। दो विषय आपने पूछा, क्या इसकी लिंक कैसे रहेगा फर्दर स्टडीज के लिए, हम उसकी चिंता कर ही रहे हैं, उसको फैक्टर इन कर ही रहे हैं और अच्छा पोर्टल के साथ, रोबोस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसको हम जल्द ही लॉन्च करेंगे।
2: जिन छात्रों ने इसको लेकर शिकायत की सोशल मीडिया पर, उन्हें पाकिस्तानी करार दे दिया गया, तमाम विवाद इससे बड़ा।
3: इसको देखो, इसको दो चीजों का अलग अलग मिलाओ, जो घटना जिन्होंने इस प्रकार चित्रित किया उन्होंने खुद भी माफी मांगा है, कोई भी विद्यार्थी को, ये प्रजातांत्रिक अधिकार उसका है, उन्होंने सही उठाया, उसको हमने समाधान भी करके दिया। जिन जिन बच्चों ने सोशल मीडिया में या ईमेल के माध्यम से या और किसी, कोई एक लड़का ने भोपाल ने सीधा अपना भोपाल केंद्र पे चला गया, उसको समाधान दिया, समाधान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया में अपना कहानी लिखा है, हम सभी का समाधान करेंगे। अभी भी कह रहे हैं जिनकी भी कुछ विषय और भी ग्रीवांस रह जाएगा उसको भी मैन्युअली हम उसको समाधान सुनेंगे, उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और बाकी रहा राहुल गांधी जी के प्रश्न के ऊपर, मैं इस समय में कोई राजनीतिक भाषा पे उत्तर देना नहीं चाहूंगा। राहुल गांधी जी की एक अभ्यास बनी है एक बिना तथ्य के ऊपर कुछ आरोप लगाना,
2: पर आपने ये जवाब दिया है और कल भी आपने ये जवाब दिया, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि जो कंपनी है को एम्ट एड्यूटेक, जिसको कॉन्ट्रैक्ट OSM का मिला, एक आखिरी सवाल इस पर, फिर मैं नीट पर बढ़ूंगी आगे, क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट नियमों के तहत हुआ था, क्या वो विवादित कंपनी है जिसकी पृष्ठभूमि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं अभी इस वक्त आपके पास?
3: तो राहुल गांधी कहते हैं जिन्होंने उनकी सरकारों में उसको काम पे लगाया, अभी भी कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों ने उस कंपनी को काम पे लगाया, तो राहुल गांधी जी के दिल्ली के लिए एक मानक कहेंगे और तेलंगाना कर्नाटक के लिए अलग मानक होगा, बाकी रहा उसकी चयन प्रक्रिया, उसमें भी कुछ प्रश्न आई है, उसको भी देखिए, इसको भारत सरकार की जो नीति नियम है उसी तरफ उन्होंने सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पोर्टल में उसको लिया गया, उसको एंगेज किया गया, उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ प्रश्न आ रही है, उसको भी हमने जो कमिटी बनाई है उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए उनको भी हमने काम दिया है, उसको भी ध्यान देने के लिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, प्रक्रिया को उल्लंघन करने को किसी के अधिकार नहीं, जो भी हो उसको जवाबदेही देने लेना पड़ेगा।
2: उसकी कोई डेडलाइन है?
3: देखो, ये सारे विषय में थोड़ी ना मैं न्यूज लाइन हेडलाइन चलाता हूँ।
2: नीट के री एग्जामिनेशन को लेकर 21 तारीख तय है, आप कल बहुत बड़ी बैठक भी हुई आपकी और रक्षा मंत्रालय की, संचार मंत्रालय की, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अब कैसे फुल प्रूफ होगा 21 जून को जो रीनीट होगा, अब क्या इसमें सेना की मदद ली जा रही है, वायुसेना की मदद ली जा रही है, कितने बड़े स्तर पर इसे फुल प्रूफ बनाने की तैयारी इस वक्त आप लोग कर रहे हैं?
3: नहीं, इसमें कोई सेना की मदद की आवश्यकता नहीं है। कल हमने जो रक्षा मंत्री जी के साथ चर्चा किया स्पेसिफिक काम के लिए, 21 जून हमारे पास समय कम है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के दायित्व तो पोस्टल डिपार्टमेंट करती है, पोस्टल डिपार्टमेंट उसको नॉर्मल रूट में अपना जो कोरियर मैकेनिज्म उनकी है उसी में वो करता है। इसको एक टाइम बाउंड और उसको थोड़ा उसकी सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हमें वायुसेना को अधिकार किया, इसीलिए हम अनुरोध किया, इसलिए सिंधिया जी और हम दोनों रक्षा मंत्री जी को मिलकर कहे कि जो फेरी वाला काम, पोस्टल की जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम थोड़ा एयरफोर्स कर सकता है क्या, उन्होंने स्वीकृति दिया है, एयरफोर्स उसको करेगा। बाकी इस बार क्वेश्चन पेपर की प्रस्तुति से लेके परीक्षा केंद्र, फिर परीक्षा केंद्र से लेके फिर दिल्ली में उसकी इवैल्यूएशन तक आने की पूरा प्रक्रिया को, पिछले बार भी फुल प्रूफ व्यवस्था था, इस बार भी उसको और मजबूती किया जाए, सारे राज्यों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, भारत सरकार के अनेकों विभागों को उसके साथ जोड़ के काम को तंदुरुस्त किया जा रहा है।
2: इसी बैठक को लेकर अब विपक्ष के तमाम सवाल आज सामने आए, और क्या विपक्ष ये कह रहा है कि पहला मौका है जब एग्जामिनेशन को लेकर रक्षा मंत्रालय इन्वॉल्व हो रहा है, वायुसेना इन्वॉल्व हो रहे हैं, वायुसेना तो देश की रक्षा के लिए नियुक्त है और देश की रक्षा से जरूरी काम के लिए वो काम करती है, ऐसे
3: क्या बच्चों की आप
2: लेकर क्यों ये फैसला लिया?
3: बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना जरूरी काम नहीं है, महत्वपूर्ण काम नहीं है? देखो विपक्ष को अपने भाषा पे रहने दीजिए, मैं उस भाषा को उत्तर नहीं दे सकता हूँ। हमारी सबसे प्राथमिकता है हम बच्चों के मन में अस्वस्थि लाए, बच्चों को निर्भीक कराए, बच्चों को अच्छे मन से परीक्षा देने की प्रस्तुत कराए, उसके लिए जो करना है हम उसको करेंगे।
2: आप एनटीए पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इस बीच जो लीक का मामला है उसकी सीबीआई अब जांच कर रही है, आपने बार बार कहा है कि सीबीआई की जांच पर आपको भरोसा है, सीबीआई की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, गुनहगार धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन एनटीए के विस्तार को लेकर, एनटीए की क्रेडिबिलिटी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम और आप 2024 में भी मिले थे, तब जब लीक का मामला हुआ था तो बहुत, उसके बाद एक कमेटी बैठी, राधा कृष्ण कमेटी बैठी, तमाम सुझाव आए, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है और अगर हुआ तो कितना?
3: अभी अभी राधा कृष्ण जी ने खुद कहा है कि जिन्होंने जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन किया था 70% उसकी पालन हुई है, 100% इम्प्लीमेंटेशन हुई है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट है, इस बार जो ब्रीच हुई है, जो कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये जिनको हमने भरोसा किया था, जिन शिक्षकों को प्रश्न बनाने के लिए भरोसा किया था वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, जिन अनुवादकों को हमने भरोसा किया था वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। ये विषय को हम गंभीरता से लिया है। एनटीए सफलता के साथ देश में हर एक साल आफ्टरऑल जेई कौन परीक्षा कराता है, सीयूईटी कौन परीक्षा कराता है, यूजीसी नेट कौन परीक्षा कराता है, सीएसआर नेट कौन परीक्षा कराता है। एनटीए अपने दायित्व ठीक निभा रहा है, इस परीक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको ध्यान दिया जा रहा है, आगे ऐसा ना हो उसकी जवाबदेही हमारी है।
2: तो ऐसे में जो सुझाव आए थे राधाकृष्ण कमेटी के जरिए कि जो डिजिटली इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए एग्जाम सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर पहुंच जाए और 4-5 घंटे पहले उसे प्रिंट किया जाए एग्जाम सेंटर्स पर, ताकि ट्रांजिशन के दौरान, ट्रांजिट के दौरान ये लीकेज ना हो, जिसका लग रहा है कि इस बार वैसा ही हुआ है। जब
3: ट्रांजिट के दौरान नहीं हुआ है,
2: ट्रांजिट के दौरान नहीं
3: हुआ, उसके पहले हुआ है, सीबीआई ने वही ढूंढ के निकाला है।
2: तो ऐसे में जो
3: एक तो पहले पहले तो मेरा आपको अनुरोध रहेगा, बच्चों के मन में ऐसा कुछ नैरेशन खड़ा मत करो जो उनमें तनाव खड़ा होगा। ये मेरे को पहला, एनडीटीवी और शिक्षा एक बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति है, आप ऐसे कुछ मत करो, हमको तीखा से तीखा प्रश्न पूछो, लेकिन ऐसे भय पैदा मत कराओ कि जैसे बच्चों के मन में और घबराहट हो।
2: सवाल इसलिए है,
3: नहीं नहीं सवाल ये नहीं, आप भय पैदा मत कराओ,
2: दूसरी
3: पहले दायित्व, बाकी हम सब विषय के उत्तरदायी है। मैंने जब पहले कहा कि इस अव्यवस्था के उत्तरदायी हम है, उसको तंदुरुस्त करने का जवाबदेही हमारी है, हम उसी काम पे लगे हैं, उसमें हम दायित्व से भाग नहीं सकते, हमको करना ही पड़ेगा। बाकी आपने पूछा कि इसकी
2: देखिए
3: सीबीटी अगले साल से होगा, इसमें हमने दायित्व ले चुका है, घोषणा कर चुका है। सीबीटी करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे देश में इसमें 22 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, 22 लाख एक दिन में करो, इसे हेल्थ डिपार्टमेंट की अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा है कि इसको पेन एंड पेपर में करो। एनटीए कई दिनों से कह रहे हैं इसको हम सीबीटी करेंगे, इसकी हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री हेल्थ है, हमें सीबीटी के लिए देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जितने दिन चाहिए उसकी आने वाले दिनों में उसको विकास करना पड़ेगा, उसको और कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम तो यही कर ही रहे हैं सीबीटी ना, जितने मैंने अन्य परीक्षाओं के नाम बताए सब सीबीटी में हो रहा है, धीरे धीरे और अगले साल हम इसको निश्चित रूप में।
2: तो नीट में क्या चैलेंजेस रहे हैं सीबीटी को लेकर?
3: अभी मैंने कहा ये हेल्थ डिपार्टमेंट की परीक्षा है, हम तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, एनटीए परीक्षा कराने वाली एजेंसी, इसलिए एनटीए पहले भी कहा है कि इसको हम सीबीटी में कराएंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री की कॉन्सेंट चाहिए, इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री स्वीकृति देगा।
2: तो 2027 जो अगला एग्जाम होगा नीट का, आप कह रहे हैं कि फुल प्रूफ तरीके से सीबीटी के तहत
3: निश्चित रूप
2: का एग्जाम होगा और उसकी तैयारी आप लोगों ने आज से शुरू कर दी है, जो पहले ही लीक का मामला आया। आप एक आखिरी सवाल मैं खत्म करना चाहूंगी बातचीत, there is this conversation about native languages which you are also aware, it has also reached Supreme Court, it's R1 R2 R3 for class 9th and 10th, ये तर्क सही था कि क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स जब 2029 और 30 में ये जो बच्चे हैं नाइन्थ और टेंथ में पहुंचते बोर्ड की परीक्षा देखते, तो वो तर्क सही है, रीज़न है कि आप तीन नेटिव लैंग्वेज भारत के आप सीख लीजिए। लेकिन अचानक गर्मी की छुट्टियों से ठीक पहले एक निर्देश आता है CBSE से कि आप 1 जुलाई से इसे नाइन्थ और टेंथ के लिए इम्प्लीमेंट करिए, तो एक तरह से अफरा तफरी मची है, स्कूल हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। इसके बारे में अभी

0: नया एक विवाद भी जब स्कूल खुलेंगे 1 तारीख को तो शुरू हो सकता है, इस बारे में शिक्षा मंत्रालय क्या सोच रहा है?
1: देख, तो 2020 में से एक पॉलिसी देश में लागू हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसमें से स्पष्टता से कहा गया है स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था 6 से 10 तक 3 भाषा में पढ़ाया जाएगा, उसमें से 2 भाषा भारतीय होगा, कोई अफरा तफरी में नहीं हुई है। यह कॉन्सिस्टेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की फेज आउट व्यवस्था है। अभी 6 से 8 अभी भी CBSE स्कूल्स में, भारत की सभी बोर्ड में, एक आधा बोर्ड छोड़ के भारत की सभी बोर्ड में 6 to 10 3 भाषा में पढ़ाया जाता है। CBSE ने 6 to 8 3 भाषा में पढ़ाया जाता है। उसमें इस बार NEP ने कहा था 2020 के बाद उस 3 में से 2 भाषा नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। और अमूमन हमारे पास जो तथ्य है, अभी भी जो CBSE कहने की पहले, NEP होने की पहले भी जो 3 भाषा 6 to 8 था, देश की 99% बच्चे 2 भारतीय भाषा में ही पढ़ते थे। अपना मातृभाषा जिस राज्य में स्कूल है उसको पढ़ते थे, इंग्लिश और हिंदी पढ़ते थे, 3 भाषा पढ़ते ही थे, उसमें 2 नेटिव भाषा हुआ। उनको इस बार CBSE ने कहा कि आप जब 9 में जाओगे उस 3 भाषा को आप कंटिन्यू करोगे, उस 3 भाषा को आपने कंटिन्यू करोगे, और उसकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन, इसकी इसकी बोर्ड एग्जामिनेशन, उसकी वैल्यूएशन नहीं होगा, इसकी एडिशनल नंबर जुड़ेगा, इसकी ये इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, ये उसको कहा गया। इसको इतना थोड़ा बोझिला कम करके रखा गया है। इसके बाद भी जो लोग कुल मिला के देश में फॉरेन लैंग्वेज की एक विवाद, एक वैचारिक विवाद चल पड़ा है कि 3 लैंग्वेज में 2 भारतीय भाषा क्यों, या 2 विदेशी भाषा क्यों नहीं, क्या इंग्लिश भाषा विदेशी है या नहीं है, यही विवाद है। उसमें कुछ लोगों की रिजर्वेशन था, मैंने कहा कि इनकी संख्या कुल मिला के CBSE इको सिस्टम पे 1% है, विद्यार्थियों की संख्या में उनकी परसेंट 1 है, फिर भी डेमोक्रेटिक देश है, उनके अधिकार वो कोर्ट पे गए हैं, ये कोर्ट में सब जुडिशियल, कोर्ट जो कहेगा वही करेंगे।
0: आखिरी सवाल, जो स्कूल विदेशी भाषा जैसे कि फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश सिखा रहे हैं, उनके पास फैकल्टी नहीं है, तो 1 जुलाई से वो कैसे पढ़ाना शुरू करें?
1: फैकल्टी नहीं है,
0: यानी कि आपके पास टीचर्स नहीं है, मैनेजमेंट के पास, या फिर तमाम चीजें,
1: तो कहां नहीं, आप फ्रेंच जर्मन पढ़ाओ,
0: प्रश्न नेटिव भाषा के लिए वो कहां से लाएंगे टीचर्स?
1: 6 से, मैंने कहा ना 99% CBSE स्कूल में 6 से 8 नेटिव भाषा में पढ़ाया जाता था, टीचर तो है ही, टीचर के कहां अभाव हुआ? 6 से 8, फिर मैं कह रहा हूँ 6 से 8 तक जो 3 भाषा में पढ़ाया जाता था, मेरे बेटी पढ़ाई की है, उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और मराठी पढ़ाई किया है, अगर वो आज 9th में होता तो मराठी पढ़ती, वो जो फर्दर का मराठी पढ़ती, मराठी पढ़ के आई 8 तक, इसलिए कोई अस्पष्टता उसमें नहीं है। कुल मिला के ज्यादा 99% बच्चे भारत की अंदर जो पढ़ते हैं CBSE में, राज्य के बोर्ड तो 3 भाषा में पढ़ते ही पढ़ते 10th तक। हम NEP ने कहा कि स्टेट बोर्ड
0: कंटिन्यू करिए, और उसी तरह से कंटिन्यू करिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन इस तरह के छात्रों की और इस तरह के स्कूलों की जो संख्या बहुत कम है, और
1: 1% तथ्य में डाटा करो, 1% है,
0: 1% है,
1: उनको हम कहें कि भाई आप पढ़ो 4th लैंग्वेज करके, विदेशी भाषा को पढ़ो, कोई हमें आपत्ति नहीं, आप 3री भाषा पढ़ना है तो 2 भारतीय भाषा पढ़ो, उसमें तो सबको स्वीकृति होनी चाहिए।
0: तो नीट 21 जून को फुल प्रूफ तरीके से होगी, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं, और 12वीं के नतीजे जो OSM के जरिए इवैल्यूएट हुए थे उनके रिड्रेसल के लिए CBSE ने कवायद शुरू कर दी है, ये आप आश्वस्त कर रहे हैं?
1: पूरा कदम उठा CBSE, उसकी जिम्मेवारी लिया है, हम उसको सरकार की ओर से भी ध्यान दे रहे हैं, और IIT के इको सिस्टम को हमने काम पर लगाया, बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक को हमने काम पर लगाया है, इसमें हमें कोई हम उसको ठीक से कर पाएंगे, इससे हमारा विश्वास हो रहा है।
0: हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी। हम बात कर रहे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि जो त्रुटियां OSM इवैल्यूएशन में आई हैं उसको तुरंत निवारण किया जा रहा है, और CBSE अपने पोर्टल पर काम इस वक्त कर रहा है, और 21 जून को नीट की जो री एग्जामिनेशन होने वाली है उसकी पूरी तैयारी उच्च स्तर पर शुरू कर दी गई है।
2: That was the education minister speaking to my colleague Sikta, where he has said that all efforts are being made to strengthen the examination process. Now, after the NEET paper leak controversy shook the country, the center is bringing in the Indian Air Force, as mentioned by the education minister as well, to transport question papers for the upcoming re-examination. Education Minister Dharmendra Pradhan says the move is aimed at ensuring a completely leak-proof and secure examination process. In a major security overhaul, the government has decided to reopen the Indian Air Force for transporting the NEET UG re-examination question papers, with the centre promising free and fair exams after the massive leak row. From postal networks to Air Force logistics, the centre is going all out to prevent another NEET paper leak. A high-level meeting chaired by Rajnath Singh and Dharmendra Pradhan cleared the enhanced security plan ahead of the 21st June retest. On that note, we're slipping to a short break. I'll be back with more details, more developments in moments from now. Stay tuned to Breaking Ground.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
4: मसाला। इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
5: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द टैलेंटेड फोटोग्राफर To create the big dream, the world comes together at Sharda University.
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's do it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
9: Intense political activity in Delhi from Karnataka. Rahul Gandhi has now met Siddaramaiah, and these are the images that we are showing only on NDTV. Siddaramaiah meets Rahul Gandhi at Sonia Gandhi's residence. Both Siddaramaiah and son Yatindra have in fact met Rahul Gandhi, and those are the visuals.

0: the country, the center, now bringing in the Indian Air Force in transporting for the question papers for the re-exam. That is what has been proposed. Education Minister Dharmendra Pradhan has said the move is aimed at ensuring a completely leak-proof and secure examination process by having the Air Force, you know, carrying these question papers to different parts of the country. So a major security overhaul as far as the physical aspect of these papers go. The government deciding to rope in the Indian Air Force for transporting the NEET UG re-exam question papers, with the centre promising free and fair exams after the massive leak row. Remember, the leak actually came from one of the places where the papers were kept, and also from various teachers who had been involved in putting together the question papers. From postal networks to Air Force logistics, the centre is going all out to prevent any leak from taking place. A high-level meeting chaired by Rajnath Singh and Dharmendra Pradhan took place yesterday to discuss the security plan ahead of June 21st retest. In fact, NDTV's Sikta Deo spoke to the Education Minister Dharmendra Pradhan on the NEET UG paper leak, as well as the controversy surrounding the CBSE examination and further issuing. And the minister has issued assurances to all the aspirants. Listen in to what he had to tell us.
1: चाहे 12वीं के नतीजे हों या फिर नीट लीक का मामला, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त छात्रों के जहन में है कि अब आगे क्या उनकी एंग्जाइटी, उनके तनाव को कम करने के लिए वो रास्ते तलाश रहे हैं, सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। और इन्हीं सवालों के सीधे जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला है, लेकिन ये कठिन घड़ी है छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि किन तनाव से एक छात्र का पेरेंट और एक छात्र खुद गुजर रहा हो। OSM को लेकर तमाम बातें कही हैं और मैं शुरुआत उसी से करूँगी कि इस वक्त OSM एक ऐसा मामला है, जब एक ऐसे पड़ाव में छात्र है जब अपने करियर की उड़ान वो भरने वाला है, यूनिवर्सिटी का दाखिला है, कॉलेज का दाखिला है, अब वो क्या फेरे में पड़ा है, वैल्यूएशन जो हो रही है, वैल्यूएशन जो हो रही है, री वैल्यूएशन जो हो रही है, ऐसे में ऐसे अभिभावकों को, छात्रों को अभी आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, मेरे दायित्व, मेरे समवेदना, मेरे सिंपाथी विद्यार्थियों की एंग्जायटी के साथ है। मैं उस विषय में देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के नाते मैं खुद को जवाबदेही मानता हूँ। हमारे दायित्व है इसकी, उस तनाव में कैसे बच्चों को निवृत्त करना, कैसे उनको रिलीफ देना। आपने OSM के बारे में पूछा और उसमें OSM एक बाधक इस प्रकार के आपने एक चित्रण किया। देखिए, हर एक साल परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद रीअसेसमेंट की मांग होती है, उसकी व्यवस्था भी है, हर एक साल रीवैल्यूएशन भी होती है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। जो रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया थी वो डिजिटली होती थी। विद्यार्थी अपने प्रश्न लिखने के बाद, परीक्षा वैल्यूएशन के बाद जब उनकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर सहमत नहीं होती है, वो अपना अधिकार है, वो जाके दोबारा पूछे कि भाई मेरे इसमें क्यों कम नंबर आया। उसकी एक प्रक्रिया, वो डिजिटली होता था, इस बार भी डिजिटली हो रहा है। उसकी पहले इस बार एक नया चीज़ किया CBSE ने, इसकी जो इवैल्यूएशन होता है परीक्षा पत्र की, प्रश्न पत्र की, वो पहले मैनुअली होता था, उसी जोन के अंदर होता था। थोड़ा इसमें भी 50 प्रकार की कंप्लेन आती थी, हमको कम नंबर आया, हमको थोड़ा पार्शियल हुआ, उस विषय में थोड़ा ऐसे हो गया। इसको OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग एक नया प्रैक्टिस है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्रैक्टिस है। ये अनेक इंस्टीट्यूट उसको अपनाए हैं, विश्व की ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। CBSE ने अपने रिफॉर्म के नाते उसको अपनाया है। अभी मैं आपको कहूँ, 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उनमें से 13 लाख विद्यार्थी लौट के आए नहीं कि मैं मेरे नंबर पे डिससैटिस्फेक्शन में रहा है, वो आए नहीं, आए 4 लाख। हर एक साल आते हैं 2-2.5 लाख हर एक साल विद्यार्थी, पहले भी आते थे कि मेरे नंबर पे कुछ विषय है, उसको थोड़ा दोबारा देख लिया जाए, और CBSE उसको देखता था। इस बार उसकी संख्या बढ़ के हो गई 4 लाख। इसकी एक प्रमुख उसमें क्यों ये ओहोपोह की स्थिति हुई, उन्होंने जब विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहले भी होती थी, इस बार भी एप्लीकेशन किया, वो पोर्टल जितना तंदुरुस्त होनी चाहिए था, जितना मजबूत होनी था, वो नहीं था। CBSE ने उस पोर्टल को सफलता से चला नहीं पाया, इसके कारण उसमें एक ग्लिच हुई, उसमें क्रैश हो गया, 2-3 दिन की थोड़ा गड़बड़ी हुई, जिसके कारण बच्चों में थोड़ा नाराजगी भी बढ़ी। यह विसंगति को ठीक कर लिया गया है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है,

0: लिए इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे।
1: All right, so many promises being made there by the Chief Minister, but yet again, another case of death taking place due to illegal liquor in the country. Well, that's it from me for the moment. Thanks so much for watching. Goodbye.

0: party meeting to elect D.K. Shivakumar as its leader.
1: Right, CLP cabinet berths being discussed in many of these crucial meetings.
2: Welcome back and shifting our focus to other big news. After the NEET paper leak controversy which shook the country, the centre is now bringing in the Indian Air Force to transport question papers for the June 21st re-exam. Education Minister Dharmendra Pradhan says that the move is perhaps aimed at ensuring a completely leak-proof and secure examination procedure. Meanwhile, in a major security overhaul, the government has now decided to rope in the Indian Air Force, like I mentioned, for transporting NEET UG re-exam question papers, with the centre now promising free and fair exams after the massive leak row. The Supreme Court earlier today also called the paper leak incident traumatic for the students in India and noted that students must not be disappointed this time. The court also confirmed that Prime Minister Modi was personally monitoring all the situation as we speak, and the IAF perhaps has now been roped in for the NEET repaper exam. All right, in other news, NDTV Sikta Dio exclusively spoke to the Education Minister Dharmendra Pradhan on the NEET UG paper leak as well as the CBSC row, further issuing assurance to aspirants. Take a listen.
3: चाहे 12वीं के नतीजे हों या फिर नीट लीक का मामला, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त छात्रों के जहन में है कि अब आगे क्या, उनकी एंग्जाइटी, उनके तनाव को कम करने के लिए वो रास्ते तलाश रहे हैं, सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। और इन्हीं सवालों के सीधे जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला है, लेकिन ये कठिन घड़ी है छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि किन तनाव से एक छात्र का पेरेंट और एक छात्र खुद गुजर रहा हो। OSM को लेकर तमाम बातें कही हैं और मैं शुरुआत उसी से करूँगी कि इस वक्त OSM एक ऐसा मामला है, जब एक ऐसे पड़ाव में छात्र है जब अपने करियर की उड़ान वो भरने वाला है, यूनिवर्सिटी का दाखिला है, कॉलेज का दाखिला है, अब वो क्या फेरे में पड़ा है, वैल्यूएशन जो हो रही है, वैल्यूएशन जो हो रही है, रीवैल्यूएशन जो हो रही है, ऐसे में ऐसे अभिभावकों को, छात्रों को अभी आप क्या कहेंगे?
4: देखिए, मेरे दायित्व, मेरे समवेदना, मेरे सिंपाती विद्यार्थियों की एंग्जायटी के साथ है। मैं उस विषय में देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के नाते मैं खुद को जवाबदेही मानता हूँ। हमारे दायित्व है इसकी, उस तनाव में कैसे बच्चों को निवृत्त करना, कैसे उनको रिलीफ देना। आपने OSM के बारे में पूछा और उसमें OSM एक बाधक इस प्रकार के आपने एक चित्रण किया। देखिए, हर एक साल परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद रीअसेसमेंट की मांग होती है, उसकी व्यवस्था भी है, हर एक साल रीवैल्यूएशन भी होती है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं हो, जो रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया थी वो डिजिटली होती थी। विद्यार्थी अपने प्रश्न लिखने के बाद, परीक्षा वैल्यूएशन के बाद जब उनकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर सहमत नहीं होती है, वो अपना अधिकार है, वो जाके दोबारा पूछे कि भाई मेरे इसमें क्यों कम नंबर आया। उसकी एक प्रक्रिया, वो डिजिटली होता था, इस बार भी डिजिटली हो रहा है। उसकी पहले इस बार एक नया चीज़ किया CBSE ने, इसकी जो इवैल्यूएशन होता है परीक्षा पत्र की, प्रश्न पत्र की, वो पहले मैनुअली होता था, उसी जोन के अंदर होता था। थोड़ा इसमें भी 50 प्रकार की कंप्लेन आती थी, हमको कम नंबर आया, हमको थोड़ा पार्शियल हुआ, उस विषय में थोड़ा ऐसे हो गया। इसको OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग एक नया प्रैक्टिस है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्रैक्टिस है। ये अनेक इंस्टीट्यूट उसको अपनाए हैं, विश्व की ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। CBSE ने अपने रिफॉर्म के नाते उसको अपनाया है। अभी मैं आपको कहूँ, 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उनमें से 13 लाख विद्यार्थी लौट के आए नहीं कि मैं, मेरे नंबर पे डिससैटिस्फेक्शन मेरा है, वो आए नहीं। आए 4 लाख, हर एक साल आते हैं 2-2.5 लाख हर एक साल विद्यार्थी, पहले भी आते थे कि मेरे नंबर पे कुछ विषय है, उसको थोड़ा दोबारा देख लिया जाए, और CBSE उसको देखता था। इस बार उसकी संख्या बढ़ के हो गई 4 लाख। इसकी एक प्रमुख उसमें क्यों ये ओहोपोह की स्थिति हुई, उन्होंने जब विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहले भी होती थी, इस बार भी एप्लीकेशन किया, वो पोर्टल जितना तंदुरुस्त होनी चाहिए था, जितना मजबूत होनी था, वो नहीं था। CBSE ने उस पोर्टल को सफलता से चला नहीं पाया, इसके कारण उसमें एक ग्लिच हुई, उसमें क्रैश हो गया, 2-3 दिन की थोड़ा गड़बड़ी हुई, जिसके कारण बच्चों में

0: थोड़ा नाराजगी भी बढ़ी। यह विसंगति को ठीक कर लिया गया है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है, 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी एप्लीकेशन किए कि हमको री असेसमेंट करना है, री इवेल्युएट करना है। उसमें से उन्होंने 11 लाख क्वेश्चन सेट्स मांगा। ये सब लगभग विद्यार्थियों के पास पहुँच गया है। अभी उस पोर्टल को हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं, उसमें IIT की टीम लगा है, नया पेमेंट गेटवे के लिए नया PSU बैंक को इन्वॉल्व किया गया है। ये सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों में। फिर जब नया पोर्टल ऑन हो जाएगा, इसमें फिर बच्चे जिनके पास कॉपी पहुंच गया है वो आएंगे, मेरे पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ये मेरा क्वारी है, या मेरा ये मिसिंग पेज हो गया, या मेरा ये विसंगति हो गया, ये सारे अभी फिर ऑनलाइन वो एप्लीकेशन करेंगे। वो पहले भी करते थे, इस बार भी करेंगे।
1: जी, हमारे इस मंच से NDTV के जरिए आप इस वक्त जो पेरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको किस तरह से आश्वस्त करेंगे, कितने और दिन में उनकी जो शिकायत है रिवैल्यूएशन को लेकर वो दुरुस्त हो जाएगी और वो वापस उस पोर्टल में अपनी जो शिकायतें दर्ज करा पाएंगे? क्या CBSE इसको लेकर कोई टाइमलाइन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज के एप्लीकेशन भी उन्हें भरने हैं?
0: देखिए, हमें ध्यान है, CUET अभी अभी खत्म हुई है, अभी अभी CUET के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आना बाकी है, JEE एडवांस की रिजल्ट 1 तारीख को आएगा। ये दोनों बड़े एग्जामिनेशन को हम 12th के रिजल्ट के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। JEE एडवांस की टीम को बताया गया है और CUET की टीम को भी बताया गया है कि आप इसको इसके साथ सिंक्रोनाइज करो, 12th की रिजल्ट आने के साथ हो कैसे, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। ये तीनों को हम सिंक्रोनाइज करेंगे, ये एक बात है। दूसरी, अभी जो अभी जानकारी था, 29th को CBSE ने पोर्टल खोलने के लिए, री वैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोलने के लिए डेट घोषणा किया था। अभी अभी मेरे को जानकारी आई है, उसमें मैंने कल खुद गया था अभी CBSE इसको देखने के लिए कि अब पोर्टल रेडी है क्या।
1: जी,
0: वो पोर्टल रेडी होने में और कुछ समय लगेगा, कल शायद कल तक हो जाएगा जब हम फुल प्रूफ हो जाएंगे। पिछले दिनों में जैसे ग्लिच होके 3-4 दिन एक कमोशन हुई, वो ना हो, इसलिए फुल प्रूफ पोर्टल के लिए कोशिश किया जा रहा है। सारे टेक्नोलॉजी के लोग लगे हैं उसमें से, मैं आश्वस्त हूँ। दो विषय आपने पूछा, क्या इसकी लिंक कैसे रहेगा फर्दर स्टडीज के लिए, हम उसकी चिंता कर ही रहे हैं, उसको फैक्टर इन कर ही रहे हैं, और अच्छा पोर्टल के साथ, रोबस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसको हम जल्द ही लॉन्च करेंगे।
2: In other news, ex-IAS officer and former World Bank executive director Dhanendra Kumar Garg passed away after a massive fire broke out at his residence in South Delhi's Hoskhas area late Wednesday night. Initial investigations suggest that the blaze was triggered by a short circuit that's in an air conditioner unit in and perhaps AC unit. At that time, Garg, his wife and family members were trapped inside the house. Police officials and firefighters, they started the rescue efforts and rushed the family to the hospital, where the former officer was declared dead upon arrival, while his son sustained serious injuries. And my colleague Anushka has sent you this report from on ground. Take a look.
3: A tragic story has come to light from South Delhi's Hauz Khas area. We're showing you the visuals of the house of an 80-year-old retired IAS officer who, in fact, died while his son sustained injuries after a fire broke out at a house in South Delhi's Hauz Khas area. We're showing you the visuals of the inside of the very room where the fire broke out. The deceased was identified as Dhanendra Kumar, who's a retired IAS officer. He succumbed during treatment at the AIIMS Trauma Center due to smoke inhalation, is what the police sources are saying. According to police, a PCR call regarding the fire at a house in Hauz Khas was received around 11:10 PM on Wednesday. Police teams and fire department personnel rushed to the spot, and 2 fire tenders were in fact sent here to service and douse the blaze here. After the fire broke out, the IAS officer and his son were shifted to hospital after being rescued from the house. While the IAS officer could not survive, his son is right now undergoing treatment and is stated to be out of danger. Now, the preliminary inquiry has in fact said and has suggested that the fire may have been triggered by a blast in the indoor unit of an AC installed in the house. At the time of incident, 5 people were reportedly inside the house and they were present, 5 people including family members and domestic help. A crime team was sent here who inspected the spot, and electronic inspection is right now underway to ascertain the exact cause of the fire. Statements of the eyewitnesses have been recorded from the very place, and we are showing you the visuals of the inside of the house, how it has been incinerated completely because of the fire that broke out yesterday night. And many people have in fact said that there were delays for the fire brigade to reach here. And while we have seen this kind of incidents is like not the first

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
4: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
5: Really?
4: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's do it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: अक्रॉस द कंट्री
8: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया। विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स। ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स।

0: Right, CLP cabinet berths being discussed in many of these crucial meetings. Stay on with us, Jayanendra. A historic power transfer in Karnataka has finally been sealed as state's longest serving Chief Minister Siddaramaiah steps down. Siddaramaiah, along with his son Yatindra, held an hour-long meeting with Rahul Gandhi at Sonia Gandhi's residence. Randeep Surjewala was also present in this meeting. After meeting Rahul Gandhi, Siddaramaiah held discussions with Mallikarjun Kharge. Minister K.J. George, Minister Priyank Kharge were also present during the meeting. DKS is also slated to meet party's high command. Governor has formally accepted the resignation of Siddaramaiah, clearing the way for Congress to begin the process of electing a new legislature party leader. Meanwhile, CLP meeting likely to happen tomorrow. All MLAs have been asked to come to Bengaluru tomorrow morning. Ahead of the meeting, supporters of DKS and Jarkiholi offered prayers for their political elevation.
1: Shri Siddaramaiah ji, aaj Rahul ji se mile. It was a very pleasant meeting. And they discussed multiple political issues. I don't have anything to say further. Thank you.
2: After your resignation, D.K. Sivakumar is said to become next CM of Karnataka. How can you see this, sir?
3: The legislator party and the high command will take a decision.
4: Yeah, it's been there now. It's very clear, crystal clear that Mr. D.K. Sivakumar ji is going to be the Chief Minister of Karnataka, with the understanding that the transformation is very smoothly done, and gracefully the greatest leader, the tallest leader, Mr. Siddaramaiah ji, has gracefully done it in such a way that we did not have any sort of an embarrassment at all.
0: Ritu is joining us from Bengaluru. Ritu, of course, important meetings there taking place, discussions on deputy chief ministers, perhaps CLP, and of course, cabinet berths are also.
5: 2022 में पंजाब के लोगों ने ढेरों उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया. पिछले 4.5 साल में क्या आपने जिन उम्मीदों के साथ ये मैंडेट पाया था उस हिसाब से काम किया या नहीं? 2027 का असेंबली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी के पंजाब मॉडल और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का रेफरेंडम रहने वाला है. पंजाब की जनता आपको और मान साहब को एक बार मौका फिर से क्यों दे, इस पर चर्चा करने के लिए एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान का.
6: थैंक यू
5: मान साहब, सत श्री अकाल, वेलकम.
6: बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले राहुल जी, एनडीटीवी और पूरे आपके ग्रुप का, जितने भी स्टाफ के आपके लोग इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए आए और आपने यहाँ बुला के हमें मान सम्मान दिया, तो मैं होस्ट भी हूँ तो आपका स्वागत भी करता हूँ पंजाब में, और आपने इतना इज्जत मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
5: नहीं, हमें इलेक्शंस का बड़ा शौक है, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, तमिलनाडु का इलेक्शन खत्म हुआ, मान साहब ने बोला पंजाब आओगे, हमने बोला फट से चलते, और जैसे ही मौका मिला टिकट कटा के यहाँ पे आ गए. और इलेक्शंस के बिल्डअप में ये मान साहब का पहला इंटरव्यू है, पहली बार ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इसके लिए मान साहब आपका शुक्रिया. शुरुआत हम लोग करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड से. आप स्टार्ट कीजिए, तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं मान साहब, उनको बताइए कि फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों दे. क्या आपने ऐसा किया जो कि अकाली बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कि आपको फिर से पंजाब की जनता चुन के लाए?
6: जो आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में गारंटियां दी थी, आमतौर पे मैनिफेस्टो में वादे होते हैं लेकिन हमारी गारंटियां थी. अनफॉर्चुनेटली बाद में बीजेपी भी गारंटियां देने लगी. पहले तो वो संकल्प पत्र भी कहते थे, कांग्रेस वाले भी संकल्प पत्र, अब वो भी गारंटियां कहने लगे. तो सबसे पहली गारंटी हमारी बिजली मुफ्त की थी, जो मार्च में हमने ओथ सेरेमनी हमारी हुई 16 मार्च को, जुलाई का पहला साइकिल, जो 2 महीने का साइकिल है पंजाब में बिजली के बिल का, तो जून जुलाई का पहला साइकिल जो फ्री हमने 300 यूनिट हर एक बंदे को, उसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं आता. कोई भी, चाहे आपके घर पे 2 AC भी लगे, आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि आपका जो 2 महीने का जो मीटर की रीडिंग है

0: वो 599 रहे, 600 यूनिट से कम रहे तो जीरो आता है। 90% पंजाब को बिजली का बिल जीरो आ रहा है और बिजली बोर्ड को भी उस कोई ऐसा घाटा नहीं है। हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, जो नेशनल कन्वीनर है, वो IRS ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स में, उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है, तो हिसाब किताब के हम पूरे
1: ये भी पता है कि पैसा इलेक्शन से पहले दो तभी ज्यादा वैल्यू आती है। पहले 4 साल दे दोगे तो वोटर फिर उसको ग्रांटेड ले लेंगे,
0: नहीं नहीं
1: चुनाव से कुछ महीने पहले दोगे तो राहुल को याद रहेगा।
0: उससे पहले क्या होगा ना, फिर एक तो 15 लाख रुपए मोदी जी वाले आ गए थे लोगों के खाते में, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर घर घर नौकरी आ गई कैप्टन वाली, तो फिर उसके बाद सुखबीर बादल के ट्रक भर के आ गए दिल्ली से जो पैसों के लाने थे। जब नौकरी वाले रिटायर होने लगे और ये 15 लाख भी खर्च हो गए, फिर मैंने कहा अब दे देते हैं, अब जरूरत होगी लोगों को, है ना, फिर इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा।
1: पहले जब मान साहब का इंटरव्यू होता था तो उसमें मजा ही आता था कि हाजिर जवाबी बड़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब आप बड़े सीरियस हो गए, अभी थोड़ा सा आप क्रैक कर रहे हो जोक्स, लेकिन अब आजकल आप बहुत सीरियस सीरियस टाइप का करते हो इंटरव्यू भी। पहले तो एकदम चलता था आपका फॉर्म धार धार धार।
0: नहीं नहीं आप थोड़ा सवाल दो चार और पूछो, आने वाला फॉर्म वो।
1: अच्छा इससे हुआ ये कि जो आपने स्कीम्स की उससे जो फिस्कल सिचुएशन है पंजाब की वो बहुत खराब हो गई। सेंटर ये कहती है कि मैक्सिमम डेफिसिट 3.5% 3.5% के आसपास होना चाहिए, पंजाब का डेफिसिट 4.5% है, 4.5%, यानी कि आप जितनी सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, और आप आज खर्च रहे हो इसका भुगतान करेंगे पंजाब की आने वाली जनरेशन, तो फिस्कल सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है पंजाब?
0: देखो ऐसा लग रहा है जैसे कर्जे का सवाल ना सेंटर सरकार ने सारे एंकर्स को दे दिया है। यूपी पे कितना कर्जा है? 8 लाख करोड़ का कर्जा है।
1: परसेंटेज पे देखो ना।
0: नहीं नहीं आप यूपी की वो भी तो देखो ना, फिर यूपी बड़ा भी है हमसे। गुजरात पे कितना, देश पे 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था 2014 को जब मोदी जी ने ओथ ली, आज 220 लाख करोड़ है, 4 गुना बढ़ गया। तो ना तो नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, वो तो आजकल वो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं नौकरी वाले, तो ठीक है ना, तो नौकरी भी नहीं दी उनको, 15 लाख भी नहीं आया हर एक के खाते में। और जो जो कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बिशप गुरु बनाने चले थे, बिशप चेला बन के रह गए हम। हमारे फैसले तो व्हाइट हाउस से आते हैं, हमारे पंजाब के फैसले या देश के फैसले कि जी
1: ये तो बहुत जल्दी खुल गए एकदम है आप तो। मैंने बोला कि आप सीरियस होकर जवाब दे रहे हो, आप तो एकदम ही बैटिंग करने
0: लगे। सीरियस जवाब ही है ना, जब जब मोदी जी पूरे देश का 220 लाख करोड़ उतार देंगे, पंजाब भी देश में ही आता है, उस दिन हमारा भी उतर जाएगा।
1: नहीं नहीं ये हुआ एक आपने जवाब दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल जवाब, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पे,
0: लेकिन हम विकास पे खर्चा हो रहा है।
1: हाँ जी
0: देखो पहले वाली सरकार 3.5 लाख करोड़ छोड़ के गई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ 3.5 लाख छोड़ा, लेकिन 3.5 लाख करोड़ उन्होंने कहाँ खर्च किया? सड़कें मैं बना रहा हूँ, सरकारी स्कूल मैं ठीक कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज को पैसा मैं दे रहा हूँ, बिजली बोर्ड का कर्जा मैं उतार रहा हूँ, हॉस्पिटल मैं बना रहा हूँ, वो कहाँ बना के, नौकरियाँ मैं दे रहा हूँ, वो कहाँ खर्च के चले गए? जो जो उनके मतलब हमारा एक वित्त मंत्री था, 4 साल तो वो अकाली दल में वित्त मंत्री था, 5 साल वो कांग्रेस में वित्त मंत्री था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी पार्टी का प्रधान रहा मनप्रीत बादल, वो 9 साल यही कहता रहा खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा अगर खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, है ना, जब है ही खाली उसको खजाना क्यों कह रहे हो यार, खजाने में तो कुछ होता है। इससे नेगेटिविटी इतनी फैल गई कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहने लगे बेटा कनाडा को निकल जाओ, बेटा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बेटा आईलेट्स कर लो, चलो निकल जाओ, यहाँ तो खजाना खाली है। मेरे अभी वित्त मंत्री आपके यहाँ आके बैठ के गए हैं, हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, हमने खुल के पैसे पब्लिक को, पब्लिक के पैसे दिए, ठीक है ना, हमारी स्कीमें
1: इतने ज्यादा ही दे दी, जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने।
0: हाँ जी
1: जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने, मतलब कि इंटरेस्ट बर्डन आपने इंक्रीज कर दिया क्योंकि आपने खर्चे इतने बढ़ा दी, जितना आपका स्टेट का रेवेन्यू है नहीं उससे ज्यादा खर्चे कर दिया आपने।
0: नहीं नहीं स्टेट देखो दो किस्म के कर्जे हैं, अगर तो लोन लेके ट्रक ले रहे हो तो ट्रक कमाई करेगा लोन उतार देगा, अगर लोन लेके आप बेटे को मोटरसाइकिल और गाड़ी लेके दे रहे हो बड़ी जो खर्चा करती है, फिर वह आपका कर्जा जो है वो आपका दुगना तिगना होगा। हम पंजाब वाले जो लोग हैं किसी का कर्ज हम रखते नहीं हैं अपने सर पे, पंजाब जो है ना वो कर्जा उतारने में बहुत माहिर है, चाहे वो किसी ने थोड़ा सा भी एहसान कर दिया हो ना पंजाबियों पर उसका भी कर्ज पंजाबी उतार देते हैं। तो लेकिन हम पिछली सरकारों की वजह से, सिस्टम की वजह से थोड़ा

0: डेट में चले गए थे, लेकिन पंजाब वापस आएगा। पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत्त विच यकीन रखी, मैं लब के लियाना कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी।
1: मान साहब, इस इंटरव्यू से ठीक पहले, कुछ टाइम पहले, राज्यसभा के जो एमपीज थे आपके, वो पच के भाग गए, वो चले गए बीजेपी में। अब सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे हो गया?
0: पता क्या है, देखो, किसी का मन कब बदल जाए ये तो कोई जान नहीं सकता इस बात को तो। लेकिन बीजेपी का जो काम करने का तरीका, पहले ईडी भेजो, ईडी के छापे होंगे, दो तीन दिन वहाँ रेड चलेगी, फिर उनको मनाएंगे, देख लो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, बच जाओगे। 10 दिन पहले उस बंदे के घर पे ईडी आती है, 2 दिन ईडी सब सर्च करती है, गुड़गांव में भी, जलंधर में भी, लुधियाना में, जहाँ जहाँ भी उसके बिजनेस हैं। और 10 दिन के बाद वो बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मतलब कौन सी वाशिंग मशीन है उनके पास, जिसमें डालते ही बंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो डरा के या लालच दे कर या फिर वैसे कि हम आपको सेंट्रल में ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसे लालच दे के ले गए। लेकिन उन जो जो गए हैं, मैं राष्ट्रपति जी को मिला उस सिलसिले में, डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि बीजेपी के आज पंजाब में 117 में से 2 MLA हैं, 2 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के मेंबर हैं। ऐसा हो सकता है जिनके 2 हों उनके 6 MP हों? तो बीजेपी को भी थोड़ा अक शर्म होती है, एक पंजाब में कहते हैं ना, बीजेपी को थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि या तो फिर ऐसा करो, इनको इस्तीफा दिलवा के कहीं राजस्थान से, बंगाल से, कहाँ से और मर्जी, कम से कम अपने MLA द्वारा तो चुने गए हों, वो हमारे MLA द्वारा चुने हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि हमारे पास इतने हो गए, वो तो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चाहे शिवसेना तोड़वा लो, चाहे उस शरद पवार की पार्टी तोड़वा लो। मैं तो ये कहता हूँ, लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप, है ना?
1: काटेंगे क्यों?
0: हाँ नहीं, इसका मतलब कैंची नहीं चल सकती। जिस पार्टी ने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया ना, वो पार्टी खत्म भाई साहब। दुष्यंत चौटाला को पूछ लो, कहाँ गई उसकी पार्टी? नवीन पटनायक को पूछ लो उड़ीसा, कहाँ गई पार्टी? बिहार में नीतीश कुमार से पूछ लो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, बड़े घाक सियासतदान अपने आप को मानते थे। ये तो जिसके साथ जाते हैं ना, पहले उसी को ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए मतलब इनके साथ अलायंस जिन्होंने भी किया, बाद में पछताए हैं वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे डेमोक्रेसी का मजाक मत बनाएं। फेयर फील्ड जो मतलब एक एक जैसा ग्राउंड मिले, अगर ये मोदी जी की लहर पे जीते, लहर पे जीतो, हम उस हार को एक्सेप्ट करेंगे अगर पब्लिक ने उनके नाम पे वोट दिए। लेकिन वोट काट देंगे, वोट SIR में आपको दादा का बताना होगा, आप पंजाब में कैसे करोगे जी SIR? फिर आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे? मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे।
1: पंजाब में भी तो हो रही है SIR की एक्सरसाइज,
0: है जी,
1: पंजाब में भी तो
0: हो रही है 25 जून से। लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का एड्रेस कहाँ का था? तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा वो परदादा का सर्टिफिकेट। आधा पंजाब तो हमारा उधर से आया हुआ है, तो ये क्या बात होगी परदादा आपके कहाँ थे? ये तो सीधी सी बात है कि आपको वोट नहीं देना हमने। 27 लाख वोटर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है बंगाल के लोगों की, और जजमेंट क्या आई? कोई बात नहीं जी, आप अगली बार वोट डाल लेना। ये कोई जजमेंट है? ये मतलब ये डेमोक्रेसी है? तो मतलब ये तो लूट तंत्र है।
1: नहीं, पर आपने बोला कि बीजेपी को आंख की शर्म करनी चाहिए, पर आपको भी तो ये सोचना होगा ना कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा की टिकट्स दी, अगर आप बिजनेसमैन को देखो, भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
0: नहीं, चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे हमने, ये बता दे।
1: वो दूसरों की बात कर रहे हैं,
0: अपनी नहीं। नहीं, अच्छा, हम भज्जी वाली मुफ्त में दे दी, कोई पैकेज में आ गई थी कोई? भज्जी से पूछ लो तेरे से कितने लिए, बाकियों के बाकी भी बता देंगे कितने कितने लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, अगर कोई मशीन आ गई ना आने वाले दिनों में, आ सकती है, AI आ गया है, सब कुछ वो सोच के भी बता देता है। अगर कोई AI के जरिए कोई ऐसा टूल आ जाए जो दिल पे लगाओ और बंदे का पता चल जाए ये इसके दिल में कितना खोट है, इसके दिल में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले उसका ग्राहक मैं हूँगा, मैं कस्टमर बनूंगा उसका, मैं खरीद लूंगा। अब क्या करें,

0: से पहले योगेंद्र यादव भी थे, प्रशांत भूषण थे,
1: उनको तो नहीं दिया आपने राज्यसभा टिकट।
0: हैं जी,
1: योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, इनको इनकी आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट थी ना, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 17 में पंजाब की जनता को बोला कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, हमें हम पे भरोसा करो। आपने टिकटें दे दी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा आसान है।
0: नहीं, मुझे ये बताओ, राज्यसभा में हर राज्यसभा का मतलब यही था कि जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन उनका देश में कोई ना कोई योगदान है। अशोक मित्तल जो हमारे थे वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी लवली यूनिवर्सिटी जलंधर, उनके 40,000 स्टूडेंट हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट तौर पे टिकट दी हमने। भज्जी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनको स्पोर्ट्स के कोटे में टिकट दी। इंडस्ट्रियल कोटे में राजेंद्र गुप्ता को और संजीव अरोड़ा, तो चलो इधर आ गए अब, उनको दी। तो मतलब हर वर्ग हमारे पास भी तो वकील, जो अभी हमारे वित्त मंत्री हैं वो वकील रहे हैं, मैं एक आर्टिस्ट था, अरविंद केजरीवाल एक ऑफिसर थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हमारी पार्टी में समाज का हर वर्ग का बंदा है हमारे पास, मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं। पार्टी ऐसी है कि कोई भी आके कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि मैं भी इस इलेक्शन से लड़ूंगा। बाकी यार राहुल, बंदे का क्या पता चलता है, आप भी तो आज तक में थे तो। अरे एक और बात, एक और बात बता, मैं जब पहली बार चुन के गया, 2014 में संगरूर से, सबसे पहले सेंट्रल हॉल में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते चलो स्टूडियो चलो, नोएडा में स्टूडियो था फिल्म सिटी में, मुझे पता है मेरे लाल रंग का कुर्ता मैंने पहना हुआ था, तो इन्होंने मेरे साथ शो किया, उसका नाम था सीधी बात, जो प्रभु चावला जी करते थे, है ना। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम तो बॉलीवुड वाले हो, तुम तो मुंबई चले जाओगे, अभी नए नए जीत के आए हो, ये सेशन पहला सेशन है, उसके बाद बॉलीवुड वाले तो कभी मिले, धर्मेंद्र भी नहीं आए, विनोद खन्ना भी नहीं मिले कहीं, अमिताभ बच्चन छोड़ गए, गोविंदा भी नहीं कामयाब हो सके, तो तुम तो बॉलीवुड वाले चले जाओगे। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, अगले 5 साल तक देखते हैं, तो अगर आप इस चैनल में रहे तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। तो अभी पिछले दिनों जब NDTV पे मैंने इनको देखा, तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा राहुल मैं तो वहीं खड़ा हूं यार। आप कहते हैं या फिर कहते हैं जब जी इनको पूछ लो, तो कहते हैं वो कुछ और बात थी, वो हमारी तरक्की होती है हमारी, तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जहां जाओ वहां कमिटमेंट से काम करो। आजकल NDTV में हो, हमें उम्मीद है कि आप एक स्टेप आगे ही बढ़े होंगे, कोई आपकी प्रमोशन डिमोशन तो नहीं हुई होगी ना।
1: पर मेरे पीछे कोई ADCBI नहीं आया, अपनी मर्जी से आया, ये अलग बात है, ऐसा नहीं कोई ADCBI पीछे लगी हुई थी। बट राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक, एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर CM है। आपको लगता है कि उनके जाने का नुकसान होगा आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन में?
0: नहीं नहीं, वो पंजाब के लोगों के साथ, मासेस के साथ उनका कोई लिंक नहीं था, वो तो मतलब ऊपर वाले राज्यसभा वाले थे। देखो एक और बात मैं बताता हूँ, राज्यसभा में ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब हार जाते हैं। जेतली साहब अमृतसर से हार गए तो राज्यसभा आ गए, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई राज्यसभा में आ गई। एक समय तो ऐसा था कि 70% कैबिनेट जो मोदी साहब की पहली कैबिनेट थी वो राज्यसभा से थी। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक ने चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है, चाहे गांव का सरपंच बन जाओ आप, पब्लिक द्वारा चुन लेना बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र नगर के वोटरों ने राघव को चुन लिया था और उसको जल बोर्ड का चेयरमैन भी बना के रखा। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जब इस्तीफा दे देते हैं तो पब्लिक दोबारा नहीं चुनती कभी भी उनको। बहुत से ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो ये बात दिल में लेके ही चले गए कि काश मुझे कभी जनता चुन ले। सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह की है, 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बड़ी दुनिया में ख्याति थी उनकी, लेकिन कभी भी वो पब्लिक द्वारा चुने नहीं गए। अगर चुना हुआ आपने पद छोड़ दिया तो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि यार हमने आपको चुन लिया था, इससे बड़े क्या बन जाओगे। राज्यसभा इज अ सिलेक्टेड, लोकसभा इज अ इलेक्टेड। सो इलेक्टेड में जो मजा है ना, वो आप मेरे साथ बैठते रहे हो सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों बैठते थे। लेकिन देख लेना, जो इलेक्टेड है वो चिंता में रहेगा हर

0: वक्त कि मैंने पब्लिक में जाना है, मैंने धन्यवाद भी करना है, मैंने पैसे भी, वो जो चाहे एमपी लैड है या कोई भी को काम करवाना हो अपने क्षेत्र का, तो उसको चिंता रहती है मैं दूसरी बार जब जनता में जाऊंगा क्या मुंह लेके।
1: सही बात,
0: राज्यसभा वालों को नहीं रहती। तो शायद राघव चड्ढा जी ने ये बात नहीं पहचानी कि मैं इलेक्टेड भी था, इलेक्शन उनको सीट छोड़नी नहीं चाहिए थी राजेंद्र नगर वाली।
1: पर जैसे संदीप पाठक थे वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे, आपके एमएलएस के साथ, कैंडिडेट्स के साथ वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है असेंबली इलेक्शन से पहले?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंजाब के लोग तो खास तौर पे ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो है कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कल्याण सिंह, मैं छोटा था तब, लेकिन मुझे बाद में जब मैंने पढ़ा इसका सारा, कल्याण सिंह ऐसे नेता थे यूपी के, इतना प्यार करती थी जनता उनको कि जब वो जनसभा करके निकलते थे तो लोग उनके पाँव की माटी को माथे से लगाते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे। वाजपेयी साहब से कोई झगड़ा हो गया पार्टी की, पार्टी में, पार्टी छोड़ दी, उसके बाद भाई साहब पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। उमा भारती, सो पार्टी संग, मैं तो कहता हूँ कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब वो जो जिनकी आप बात कर रहे हो, अभी मेरे ख्याल में आपने हमें याद करा दिया, हम भी भूल गए, चलो दैट इज़ पास्ट, पास्ट, इवन गॉड कांट चेंज पास्ट, चलने दो, कुछ नहीं होता फर्क।
1: आप तो खुशी होगे कि बला टली
0: है जी,
1: आप तो खुशी होगे कि गए।
0: मुझे क्या खुशी होगी, मेरी पार्टी के मेंबर थे, मुझे दुख हुआ इस बात का कि कुछ बहुत, जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुत लोग, उन लोगों के साथ मैं बहुत क्लोजली फैमिली मेंबर के तौर पे हमने काम किया, उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके मन में क्या आया, चलो भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी।
1: मुझे पता था कि भगवंत मान ना मेरी थोड़ी टांग खींचने वाले हैं, लेकिन इनसे पंगा लेना बड़ा खतरनाक है, पंगा लोगे उल्टा ही पाएगा, तो पंगा लेना ही नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं अपने सवाल पूछूंगा आपसे हाजिर जवाबी में, तुकबंदी में, तो पंगा लेना ही नहीं है।
0: पता क्या, ये भी पंजाबी है ना, इसके नानके पटियाला में है, तो इसको मुझे पता है, इसकी सारे पासवर्ड मुझे पता है इसके।
1: ये अलग से आप बोल रहे हो कि सबके पासवर्ड पता है, लोग बोलेंगे कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग, की सरकार एकदम सब पे सीआईडी कर रही है। सीआईडी कर रही थी और आपके खुद के एमपी निकल गए, आपको पता नहीं चला क्या सीआईडी है आपकी?
0: हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम अपने काम लेके जाएंगे 2027 में लोगों के पास, 5 साल के जो काम किए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने 2020 की इलेक्शन से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया था दिल्ली वालों को कि अगर मेरे काम पसंद आए तो वोट डाल देना, वरना ना डालना। ऐसा बोलने के लिए जिगरा चाहिए, वरना हर, अभी तक मोदी जी कह रहे हैं 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, अभी तक कह रहे हैं देश बचाना है, देश बचाना, भाई किससे बचाना है बता तो दो, 6-7 बार देश बचा चुके हैं, अभी भी वो देश बचाने के लिए विदेश गए हुए हैं, ठीक है ना। वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, आप ब्याह शादी में सोना मत पहनो, आप तेल मोटरसाइकिल में, गाड़ी में तेल मत डलवाओ, घर से काम करो, और खुद ही निकल गए उसी दिन ही, उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए।
1: उन्होंने बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा हो, उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ, छुट्टी मनाने मत जाओ, ये
0: अच्छा
1: उनका
0: एक, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 बार विदेश गया हूँ, एक बार साउथ कोरिया और जापान, अभी नीदरलैंड और फिनलैंड, दोनों बार आके मैंने एक एक दिन की जितनी मीटिंग्स थी एम्बेसी ने करवाई, जो हमने की, पूरा ब्यौरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पर पूरा ब्यौरा दिया, ये इनके विजिटिंग कार्ड हैं, ये फलां कंपनी के मालिक हैं, ये पंजाब में 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए, ये प्रधानमंत्री जी ने कभी विदेश से आके पार्लियामेंट में या फिर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस को ये ब्यौरा दिया है कि जब हम गए थे क्या क्या समझौते होके आए हैं, बताइए। आप तो बड़े पत्रकारों में हैं, आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए था ना, मनमोहन सिंह साथ लेके जाते थे, पूरा प्लेन भर के जाता था, ट्रंप भी अब जाता है, जब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो एयरफोर्स वन में भी करता है ना, कौन जाता है जी प्रधानमंत्री के साथ, आके कोई डिटेल देते हैं कि हमने नीदरलैंड में क्या किया, नॉर्वे में क्या काम
1: तो था। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग चलती रहती है ना, ऐसा थोड़ी कुछ छिपके कर रहे हैं।
0: वो बताना, आके उनका रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी हैं उनके पास, वो प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा दे ऑपोजिशन को, देश को दे ब्यौरा कि हम जी इतने करोड़ के समझौते हुए हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या करके आए हैं वहाँ। पता नहीं, और देशों के नाम नहीं पता भाई साहब, हमने भी ज्योग्राफी तो हमने भी पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी, ओलंपिक भी देखते रहते हैं, वहाँ तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ चचुआ चिचुआ कनगेशिया बगलेशिया टकलवेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं हम। अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो जेसीबी देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ, जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहां क्यों नहीं रहते वो?
1: तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर वो जा रहे हैं?
0: इतना भी तो एक, एक, एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। एक मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जफ्फी डालते हैं, इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया बताइए?
1: अमेरिका ने इंटेलिजेंस,
0: अमेरिका ने साथ दिया, अमेरिकन तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। बताइए एक मुल्क बता दीजिए, मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, तुर्की गए, तुर्की ने ड्रोन दिए उनको। अभी भी हम किसके साथ हैं? पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है ये खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया, हमला ईरान पर हुआ है, कुटाप्पा जो हो रहा है वो इसराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई, ये क्या हो रहा है यार?
1: बेइज्जती क्यों हुई
0: है?
1: बेइज्जती क्यों हुई
0: कि पता नहीं हमारा रशिया से कहते तेल लेने की, मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा, तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते अभी? वो अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे?
1: काफी टाइम से तो ले ही रहे थे ना, अभी भी तो
0: 7 रुपए पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया, 2 रुपए जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे से बढ़ जाता है, जब सुबह जागते हैं, आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो आप रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? और अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद, इजाजत वो देगा? व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम, जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की के जो ट्रंप की इतनी बात माननी पड़ती है कि वो आधा घंटा पहले ट्वीट करता है, हम कहते हैं हाँ जी बंद हो गया ऑपरेशन।
1: आप ये भी तो देखो कि बाकी देशों में जितना तेल का दाम बढ़ा है खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद, हिंदुस्तान में उससे बहुत कम बढ़ा है, और कई महीने तो बढ़ा नहीं था, अब भी बढ़ा है। जितना कि दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ा, उससे तो बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में बढ़ा है।
0: देखो जिस तरीके से आप काउंटर कर रहे हो ना, ये तो वो बात हो गई। एक बंदे से किसी ने पूछा, कहते जंगल में अगर तू जाए तो तेरे पीछे शेर पड़ जाए, कहते जी मैं उसको गोली मार दूंगा, कहते तेरे पास कारतूस ना हो, कहता मैं बंदूक का बट मारूंगा उसको सर में, कहता बंदूक ना हो, कहता मैं चाकू निकालूंगा गला काट दूंगा, कहता अगर तेरे पास चाकू भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा शेर की आंखों में डाल दूंगा, कहता अगर तेरे पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के ना एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, कहता अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए तो। उसने कहा यार जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तू बता तू किसकी तरफ है, तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है?
1: मैं किसी की तरफ
0: नहीं। मैं मोदी जी के खिलाफ कोई बात बोलता हूँ काउंटर करने लग जाते हो?
1: नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना।
0: किसकी तरफ हो?
1: मैं, अरे क्यों, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं ये थोड़ी कि मान साहब छा गए, मान साहब छा गए, इसलिए थोड़ी
0: मैं कहना सवाल पूछो, मेरा सवाल है सवाल, जवाब को डिफेंड करना थोड़ी सी।
1: नहीं नहीं, अरे सर तो इसीलिए तो इंटरव्यू बनता है ना, फिर मैं बैटिंग करूंगा आप बॉलिंग करोगे, मैं आप बॉलिंग करोगे बैटिंग करूंगा।
0: तो चलो मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं। बंगाल की इलेक्शन में अमित शाह जी ने कहा था भारत के पास तेल का प्रॉपर जो स्टॉक है, एलपीजी का प्रॉपर स्टॉक है, कोई तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और ये आप तेल की जो है कीमतों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको हर बात, हर कमज़ोरी अब उस जंग के नाम लगाएंगे, उस जंग के कंधे पर धर रख के अभी चला रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, नेशनल लेवल की पार्टी हमारी, हम पूछ रहे हैं कि आपने आप हमें बता दीजिए ना कि तेल कितने दिन का है। आप कहते हैं मैं अपने काफिले में से 2-3 गाड़ियां कम कर दूंगा, तुम आप घर से मत निकलो, तुम ये ना करो, सोना सोने की आपने बोल दिया कि सोना मत खरीदो, कितने लोग बेरोजगार हो गए जी, कितने लोग मतलब ये प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए सोना मत खरीदो।
1: कौन बेरोजगार हुआ
0: है जी?
1: बेरोजगार
0: जो सोने की दुकानों वाले,
1: बिक्री कम होगी सर, बेरोजगार। अब ज्यादा अतिशोक्ति मत करो,
0: प्रधानमंत्री कहेगा कि सोना मत खरीदो, पहले कहते थे ये मत खाओ, फिर कहते भी ये मत पहनो, आपके घर के फ्रिज तो चेक करने आ जाते हैं कि क्या क्या खा रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना, मतलब

0: डेमोक्रेसी है अगर बिगेस्ट डेमोक्रेसी।
1: अच्छा, ये बड़े स्मार्ट है, ये ले गए हमें पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए। पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, आप जा रहे हो गल्फ वॉर की। अच्छा बताओ ये कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है वो ये कि भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। जब से उनकी दिल्ली की सरकार गई तब से ये चार्ज लगता है कि सुपर सीएम वो है, पर्दे के पीछे से क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसले अरविंद केजरीवाल ने।
0: नहीं वैसे मुझे नेशनल पार्टी है तो हमारे भी जो जो पंजाब का प्रभारी होगा दिल्ली से आते हैं मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है ना। अब कांग्रेस है तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोगा से हैं, तो मुझे बताइए जो जो पहले हरीश चौधरी आए थे वो बागा पुराना से थे, ठीक है ना। अभी जो बीजेपी के प्रभारी आते हैं नितिन नवीन क्या मतलब मलिकोड़ला से हैं, तो मतलब नेशनल पार्टी हमारी भी, हमें नेशनल पार्टी कंसिडर करो। अब हमारे भी तो वो हाँ डिसीजन मेकिंग में कभी उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया।
1: सच बताओ,
0: मैं आप लोग बता देंगे सच 2027 में, फिर आप ही कहोगे ये देखिए रुझानों में आम आदमी पार्टी ने मतलब बहुमत हासिल कर लिया है, रुझानों में बहुत बहुमत हासिल कर लिया। आप कहोगे, आप शर्त लगा लो उस दिन की तरह मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ।
1: पंजाब के सरकार के जो फैसले होते हैं अगर 100 फैसले होते हैं उनमें अरविंद केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते
0: हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं
1: और पीछे बताते कितने कि ये करो वो करो।
0: नहीं अगर अगर वो करेंगे भी मैं आपको क्यों बताऊंगा फिर। मुझे ये बताइए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है?
1: मोहन यादव।
0: मोहन यादव किसके नाम पे लड़े थे?
1: मोदी जी के नाम
0: ना। लाडली बहना किसकी थी?
1: शिवराज
0: चौहान, उसके नाम पे लड़े, उसको ले गए उधर। चलो जी पता नहीं कौन राजस्थान में जिससे पर्ची खुलवाई थी वो कौन थी? वसुंधरा सिंधिया, उसके नाम पे लड़े, उसी से पर्ची खुलवाई।
1: उनके नाम पे नहीं लड़े,
0: मतलब
1: काम ऐसा तो बीजेपी पार्टी के तौर पे लड़ी ना।
0: बीजेपी विदाउट फेस जाती है, हम फेस के साथ जाएंगे। जो अगर फेस लोगों को पसंद आएगा तो ही वोट डालेंगे ना। तो फिर अगर अगर उन्होंने कोई और फेस लगा रखा है मेरे पे तो लोग कैसे यकीन करेंगे? बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगेंडा गलत हो रहा है। दिल्ली और पंजाब हम आपस में पार्टी जो, मैं तो गुजरात भी जाता हूँ, मैं भी गुजरात जाता हूँ, गुजरात प्रचार करने के लिए जाते हैं। हम अच्छी अच्छी स्कीमें जो पंजाब की गुजरात वालों को भी बताना है। हमारे पास 5 MLA गुजरात में भी हैं, 1 डोडा में जम्मू कश्मीर में भी है, 4 हमारे MLA गोवा में भी हैं। हमारी नेशनल पार्टी है तो हमें भी नेशनल पार्टी कंसिडर करो ना। हमारे फैसले भी कई बार हम दिल्ली बैठ के भी करते हैं फैसले, हाई कमांड है, PAC है, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है, हम NGO थोड़ी हैं अब। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है।
1: इसका एक काउंटर है, वो ये कि पहले अरविंद के, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि पहले अरविंद केजरीवाल बहुत हावी हो रहे थे, आजकल भगवंत मान थोड़ा पुशबैक कर रहे हैं। ये दूसरा
0: आप ही मुझे पीछे कर लेते हो, आप ही पुश कर लेते हो, आपकी खबरों में होता है ये, ऐसा है नहीं। पंजाब सरकार स्मूथली चल रही है और लोग पंजाब के खुश हैं। 60-60 साल बाद पानी मिला है कहीं कहीं पर आके, और पंजाब के लोग जो हैं वो इतने खुश हैं कि इतने वादे जो पार्टी ने किए और सारे वादे पूरे करके पार्टी बैठी है। अब तो हम वादों के अलावा काम कर रहे हैं, वादों के बिना काम कर रहे हैं।
1: आपने ड्रग्स पे एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, लेकिन मैं लोगों से पूछ रहा था कि जो एंटी ड्रग्स कैंपेन है वो कैसा चल रहा है, तो फीडबैक ये मिला कि जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है।
0: बिल्कुल ऐसा है कि हमारे अभी कन्विक्शन रेट हमारा 87% है, पंजाब देश में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा एक इनका जाल बिछा हुआ है। वो क्या करते हैं, जो एडिक्टेड हैं उनको ही ज़्यादा देते हैं कि 2 ग्राम आपके लिए, 7 ग्राम आपको टोटल दे रहे हैं, 4 ग्राम आप 2-2 ग्राम के लिए आप आगे 2 ग्राहक बनाओ, आपका फ्री दे देंगे। ऐसे चेन रिएक्शन चलता है। हम उसमें बहुत कामयाब हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में। अभी एक ड्रग का सरगना जेल में रह के आया 6-7 महीने, ठीक है, अभी जमानत हुई है। NDPPS एक्ट को हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ बात चलती रहती है। अब युद्ध नशे विरुद्ध जो जब चलाया है, प्रॉपर्टीज़ उनकी डिमोलिश की हैं, तो अब शरेआम बिकना बंद हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया, शरेआम बिकना बंद हो गया, लेकिन जो चोरी या कुछ ऐसे इस तरह से चलता है जो पाकिस्तान से आता है, ये नेशनल प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट ए पंजाब इशू, के कल्ले पंजाब का इशू।
1: मुझे याद है जो हमने इंटरव्यू किया था आपका संगरूर में पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले, मैं उसको देख रहा था यहाँ पाने, एक ओपन एयर गाड़ी में आप घूम रहे हो, आपके बाजू में हम लोग खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपने कहा कि अगर मुझे सरकार में आने का मौका मिलता 3 महीने के अंदर में ये जो उड़ता पंजाब की जो प्रॉब्लम है, पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दूंगा, ये आपने वादा किया।
0: नहीं पते, इसमें कई लेयर में काम किया हमने। अगर हम सप्लाई चेन तोड़ते हैं तो लाखों वो जो एडिक्टेड हैं, वो तो मरीज हैं ना, उनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो विद्रॉल सिम्टम में आएंगे, वो तड़पेंगे, फिर उनके लिए हमने रिहैब सेंटर बनाए, पहले रिहैब सेंटर को अपडेट किया, उसके बाद हमने पंजाब पुलिस में बहुत सी बदलियां की। हमने 20-20 साल से वहीं पुलिस वाले तैनात थे, उनकी यारियां रिश्तेदारियां वहीं पे थी, वो भी मिले हुए थे, लोग ड्रग स्मगलर को जो उनके गांव में बेचने आता था उसको थाने में पकड़ा के जाते थे, लोग बाद में गांव पहुंचते थे, वो पहले पहुंच जाता था, थाने से ही जमानत हो जाती थी, कानून थोड़ा कमज़ोर था। अभी हमने कानून में भी थोड़ा सोध अमेंडमेंट की है, तो उसके बाद फिर हमने सप्लाई चेन तोड़ने का फैसला किया है। अब सप्लाई चेन पे हम लगे हुए हैं, और होपफुली हम स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ, नौकरी, यूथ को हम, ताकि वो दोबारा ना उस तरफ जाए।
1: एक जो दूसरा आरोप लगता है वो ये कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन के बड़े फोन आते हैं, उद्योगपति कहते हैं कि वो कोई भी, मतलब गोल्ड इब्रार हो, लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के नाम पर, अब पता नहीं उस गैंग से फोन आ रहे हैं।
0: पहले वाली सरकारों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है, उन्होंने गैंगस्टर अपनी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिए, है तो हमारे ही लड़के हैं वो, फिर वो ना तो दलदल में फंस गए, ना तो निकलने के लायक रहे कि हम इधर से कहाँ कैसे निकलें। तो फोन आते हैं, लेकिन हम लोगों को अब यकीन है, लोग पुलिस के पास आते हैं, हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई कॉल आती है हमें बताइए, कोई आईपी नंबर या कोई उसका जो भी, ज़्यादातर पुर्तगाल, दुबई, मलेशिया से भी हम पकड़ के लाए हैं कुछ।
1: नहीं पर आप ये सोचिए ना, लोगों को ऑब्वियसली आपकी पुलिस पे या लॉ एंड ऑर्डर पे शक है, इसीलिए वो एक्सटॉर्शन को दे भी रहे, वरना पुलिस पे विश्वास हो
0: नहीं
1: तो वो दे ही ना किसी को पैसा।
0: ये ड्रग और ये एक्सटॉर्शन के फोन, ये क्या हमारी सरकार में शुरू हुए, उन्होंने बढ़ाया, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी, हम कोई पुष्टपनाई नहीं करते कि हमारी फलां फलां गैंगस्टर के साथ कोई बातचीत होती है। ये तो अकाली दल तो गैंगस्टर को टिकटें दे रहा है, अभी तरन तारण में क्या किया था, गैंगस्टर के रिश्तेदार को टिकटें दी थी, आज भी गैंगस्टर को टिकटें देने में सबसे ज़्यादा अकाली दल है, अकाली दल का नाम लेके वो करते हैं कि हम अकाली दल, और उनका खुद के नाम लेके कत्ल किए हुए हैं, कि कत्ल करने के बाद उसकी छाती पे पांव रख के जिंदाबाद के नारे लगाए हुए हैं। तो उन्होंने जो कांटे बोए थे उनको हम चुग रहे हैं। हम, मेरा ना तो किसी बस में हिस्सा है, ना किसी रेत की खड्ड में हिस्सा है, ना किसी ढाबे में हिस्सा है, ना होटल में हिस्सा है, ना समोसे की रेड़ी में हिस्सा है, मेरा हिस्सा है तो पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों के दुख सुख में हिस्सा है। अदरवाइज़ हम तो, हमें तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स में, हम क्या कोई इनसे कोई पैसा कमाने आए हैं, हम इस धंधे को प्रोफेशन बनाने नहीं
1: आए कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों से बात करो पंजाब में, उनसे बात करो, कहते नहीं पेटी करप्शन तो अभी भी है, अभी भी आरटीओ हो, लैंड रजिस्ट्री हो, पैसे तो देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान मान के राज में
0: 70 साल का उलझा हुआ ताना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमने बहुत अफसर सस्पेंड किए हैं, विजिलेंस के चीफ तक सस्पेंड किए हमने, ये फैसले लेने के लिए दलेरी चाहिए, जिगरा चाहिए इसके लिए। तो करप्शन है या जो जितनी भी सोशल इवल्स हैं उनको ख़त्म करने में हम लगे हुए हैं, हमारी नीयत पे खोट नहीं है। सफलता देर मिले, सवेर मिले, अंधेर मिले, लेकिन मिलेगी, लेकिन हम नीयत से काम कर रहे हैं।
1: अच्छा एक सवाल है, वो सवाल लोगों के जहन में है, अब आप बुरा मत मानना लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए, ये चार्ज आपका असेंबली इलेक्शन में भी लगा, आप पंजाब की जनता को, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको बताइए कि ये जो चार्ज है बार बार भगवान मान पे,
0: उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास और इल्ज़ाम क्या आएगा। मुझे 12 साल हो गए, 2014 में पहली बार जीता था मैं, 2012 में पॉलिटिक्स में आ गया था, एक इलेक्शन पहले भी लड़ा, 14 साल हो गए, 14 साल से वो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान तो दिन रात शराब पीता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार कोई जो 14 साल से लगातार शराब पी रहा है दिन रात, वो जिंदा है आपका बता दो भाई साहब, कोई जिंदा है क्या? मतलब मैंने मंडी गोविंदगढ़ से लोहे का लिवर लगवाया हुआ है, ठीक है, ये उनका, उनके पास और कुछ है ही नहीं ना, फिर इल्ज़ाम लगा दो, ये तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, कौन सा कंडेम ही करेगा बाद में, अगला बंदा सफाई देता रहेगा, है मैं बोल देता हूँ वो ड्रग लेके आता है, कोई कहता है सुखबीर बादल अफीम खाता है, बोलते हैं उसको सुखा अमली बोलते हैं, वो बताए, ठीक है ना, वो कहते हैं जब भी कोई गलत मलत बयान देता है, मैं अपने पिता को पिता समान तो नहीं कहता ना, वो तो अपने पिताजी को कहता है मेरे पिता समान है, पिताजी को उठ के बोलना पड़ा था पिता समान नहीं हूँ पिता हूँ। उनका एक वो कांग्रेस का प्रधान है वो 12-5-48 बोल रहा है, ठीक है ना, वो मैथ कोई पता नहीं किधर लेके जा रहा है, वो क्या खाते हैं जी मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये तो पर्सन वो मेरी माँ के बारे में बोलने लगते हैं, फिर मेरी बहन के बारे में बोलते हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोलते हैं, इनके पास और कुछ है ही नहीं, गालियाँ देते रहते। लोग कहते हैं यार इलेक्शन आने दो पता चल जाएगा। इससे पहले भी 2017 और 2022 में यही मुद्दा बनाया था, तो लोगों ने पहली बार हुआ है कि लोगों ने 92 out of 117 दी, इतना बड़ा मैंडेट पहले किसी पार्टी को।
1: चैलेंज किया कि ब्लड टेस्ट करा लो,
0: क्यों करा लें उनके कहने पे, वो करवा लें, वो तो स्मगलर हैं, उनके उनके पिताजी तो सोने के बिस्कुट स्मगलिंग करते थे, वो तो उनका करा लेते हैं ब्लड टेस्ट हम जो जो ड्रग बांट रहे हैं देश में। सो इसलिए ये इनका सिर ये राजनीति या ये मुद्दा नहीं है पंजाब का, मुद्दे का पता तब चल जाएगा ना जब लोगों ने मुझे बोल दिया कि भगवंत मान हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तू काबिल नहीं है पंजाब चलाने के, 2027 में पता चल जाएगा, आ जाएं बात पता चल जाएगा। 2027 में क्या रह गया, नवंबर दिसंबर में कोर्ट लग जाएगा, यूपी के साथ होती है इलेक्शन इसलिए यूपी में कुछ ज़्यादा राउंड होते हैं, हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होती है तो पता चल जाएगा क्या फरवरी में।
1: पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी अब बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि जैसे हम बाकी स्टेट्स में जीत रहे हैं पंजाब में भी बीजेपी कुछ कर सके।
0: कैसे जीतते हो आपको तो पता होगा।
1: नहीं नहीं वहाँ पे इतना बड़ा बहुमत आया।
0: नहीं नहीं आप तो बिहार भी जाते रहे हैं उनके
1: तो, यहाँ पश्चिम बंगाल भी गया था।
0: हाँ हरियाणा में भी थे, कैसे जीतते हो
1: आप बताओ कैसे जीते।
0: पहले लड़ाई करवाते हैं दो दो दो समुदाय में, फिर एक समुदाय की तरफ हो जाते हैं, डराते हैं, बम धमाके भी होते हैं, दंगे भी होते हैं, नूह में दंगे हुए, मणिपुर जल गया, बिहार में लड़ाई हुई, बंगाल में कत्ल हुए, तो इसका मतलब पंजाब में भी ऐसा कराएंगे।
1: क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को आगे करेंगे, वैसे ही आपके पार्टी के कुछ राज्यसभा MPs आ गए और वो अभी गांव में उतनी नाराजगी नहीं है जैसे पहले दिक्कत हो रही थी कैंपेन करने में, अब वैसा नहीं है जैसे पहले था, बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं, क्या लिख रहे हो आप
0: बीजेपी को 2027 में? पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का।
1: लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहें कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट,
0: वो भी पठानकोट साइड, साइन भी कर दिए।
1: क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे आएंगे?
0: मैं लोगों में रहता हूं जी, ये लिख लेना, रोक लो रोक लो। और कांग्रेस कांग्रेस का लिख दूं?
1: कांग्रेस का भी लिख दो। किन्नी दे रहे हो तुसी कांग्रेस को?
0: सिंगल फिगर।
1: ठीक ठीक लगा लियो थोड़ा जा,
0: मैं करता हूं 129
1: कांग्रेस को।
0: अकालियों को साइन इसके नीचे भी कर दूंगा, ऊपर वाले चल जाएंगे,
1: एक ऑटोग्राफ चल जाएगा। हाँ। नहीं वो अकालियों को जीरो
0: ले लो,
1: ठीक ठीक तो लगा लो, पूरी फैमिली गायब।
0: देखिए भाई इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
1: अपना तो बताया नहीं आपने पिछली बार,
0: बाकी जितनी बच गई वो दे दो
1: सारी।
0: हाँ
1: आपका मेन कंपटीशन आपके हिसाब से अगले इलेक्शन में किससे होने? ये अकाली को जीरो दे रहे हैं, कांग्रेस को 1 से 9, बीजेपी को 1 से 2। ऐसा ही दिल्ली के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने किया था, लिख के लिख लो, लिख के लिख लो, फिर दिल्ली में क्या हुआ?
0: एक बार लिख के भी दिया था तो आपको आज तक पे श्वेता ने किया था ना कि चन्नी भी हारेगा दोनों जगह से, कैप्टन भी हारेगा, सिद्धू भी हारेगा, मजीठिया भी हारेगा, बादल दोनों बाप बेटा हारेंगे, मनप्रीत बादल भी हारेगा, हारे ना।
1: पर उस टाइम पे आप ऑपोजिशन में थे, अब आपका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका टेस्ट है ऑपोजिशन में,
0: ठीक है ना, इसका टेस्ट का रिजल्ट तक तो वेट करो, अभी क्यों कंडेम कर रहे हो
1: इसको? सेव कर लेना भाई,
0: सेव अब वीडियो में आ गया,
1: सेव होगा उस दिन निकालेंगे ये,
0: सेव हो गया।
1: हाँ सेव हो गया, हाँ कैमरे पे भी आ गया,
0: हाँ कैमरे पे सेव हो गया,
1: मैं भी सेव कर लूंगा।
0: तो अगर आप उस समय NDTV में हुए तो मेरे इंटरव्यू करना
1: यार, अभी तो आया हो ये बताओ पंगा कर रहे हैं,
0: कहीं भी हुए कहीं भी हुए तरक्की हो सकती है आपकी
1: जो प्लस इस रात तरक्की करनी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी हो आप तो वैसी सब मिक्स एंड मैच।
0: नहीं मैं इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लिख रहा हूँ और मैं इंटरव्यू भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दूंगा, आप जब जहां भी होंगे इंटरव्यू आपके साथ करना ही करना। मैंने
1: डन, इंटरव्यू होना चाहिए वो जरूरी भी है। नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के कुछ पहले से बेहतर करने के
0: पब्लिक, बीजेपी पब्लिक में कब गई है? बीजेपी जितना एंटी पंजाब बीजेपी चल रही है इस वक्त।

0: कभी कहते हैं चंडीगढ़ को हम विधानसभा बना के चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह झूठी बना देंगे, पंजाब से छीन लेंगे। कभी कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारी है, वो उसका उसका सेनेट जो है हम बदल देंगे। कभी कहते हैं BBMB के द्वारा हम भाखड़ा नंगल का पानी हरियाणा राजस्थान को देंगे। कभी कहते हैं पंजाब की झांकी हम नहीं दिखाने देंगे। RDF का हमारा पैसा 9,000 करोड़ हमारा रोक रखा है, हैं बैट का हमारा NHM का नेशनल हेल्थ मिशन का वो पैसा नहीं दे रहे। कोई तो ऐसा
1: तो
0: काम हो
1: नहीं है फिर पंजाब के लिए, अगर डबल इंजन सरकार बन जाए तो पैसे आने में प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप बोल रहे पैसे नहीं आ रहे?
0: नहीं नहीं, जो हमारे बन रहे हैं हमारा राइट है, जो हमारा RDF का पैसा है वो किस मुंह से आके वोट मांगेंगे? और मुझे ये बता दो BJP में BJP का नेता कौन है? सारी कांग्रेस जो है कड्डी वड्डे छड्डे सब इतने इधर आ गए। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर वो BJP में माइग्रेशन है ना, मनप्रीत बादल जो वित्त मंत्री था माइग्रेशन BJP में, रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस में था माइग्रेशन, फतेह जंग बाजवा प्रताप बाजवा का सगा भाई माइग्रेशन, ठीक है ना, सुनील जाखड़ उनका प्रधान था माइग्रेशन। तो मतलब कौन है उनके पास जो अपना है?
1: नहीं नहीं, बट यही तो माइग्रेशन से पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, वो शुभेंदु अधिकारी
0: तृणमूल से आए। पश्चिम बंगाल और पंजाब में फर्क है ना, ये अगर ये जिताने वाले होते तो 2022 में ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस को जिता देते। ये सारे मनप्रीत बादल भी कांग्रेस में था, कैप्टन भी कांग्रेस में था, सुनील जाखड़ भी कांग्रेस में था, तो ये उस समय कांग्रेस को ऐसे थोड़ी होता है कि लोग ऐसे चेहरा देखेंगे और वोट डाल देंगे। पंजाब के लोग हैं पॉलिटिकली अवेयर हैं।
1: नहीं, क्योंकि BJP की होप ये है कि सिखों में नाराजगी थोड़ी कम हो गई है, हिंदू समाज उनके साथ है, और अगर उनका
0: ये ड्राइंग रूम में बैठ के बातें नहीं होती भाई साहब, गाँव में चलना, कभी गाँव में चल के पूछना लोगों को क्या हाल है, ठीक है ना। और पंजाब के लोग किस बात की तारीफ कर रहे हैं, किसको चाहते हैं, ठीक है ना। ये कांग्रेस में 6 मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनके वॉलंटियर काम है, मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं। अंधेरे में ईंट मारो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लगती है जाके, ठीक है ना। उनका कांग्रेस का तो सीधा साहब है, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की जाखड़ से नहीं बनती, ठीक है ना। नहीं जाखड़ तो चलो ये है नहीं, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। वो तो कटाक पटाक वो तो चल रहा है काम, इनको है नहीं कुछ।
1: सिद्धू की कमेंट्री ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की?
0: क्या
1: सिद्धू की कमेंट्री और कॉमेडी ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की?
0: नहीं भगवंत मान, मैं कब कह रहा हूँ मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल स्टायर करता हूँ, व्यंग करता हूँ, ठीक है ना। सच कई बार चीज़ों को बताने का तरीका कोई और होता है, ठीक है ना। तो मेरे तरीके को लोग पसंद करते हैं, मैं क्यों फिर बदलूँ उस तरीके को? मेरे से लोग उम्मीद करते हैं कैसे बोलो, और जो भी मैं बोलता हूँ उसमें कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई काम हो। देखो
1: नहीं, पर जब सरकार के बाहर हो तब सटायर में ज्यादा मजा आता है, सरकार के अंदर रह के तो सटायर करना मुश्किल हो जाता ना।
0: नहीं क्यों, मैं कर तो रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ।
1: नहीं नहीं, आप कर रहे हो बाकी ऊपर, पर सरकार के अंदर रहते हुए अपने काम को एक्सप्लेन करते वक्त तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है।
0: नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ नाल, जो मेरे मेरे पे कोई वो करते हैं कोई, वो असल में ना वो मेरी पिच पे आके खेलने लगते हैं। कॉमेडी उनको करनी नहीं आती, वो इस चक्कर में कुछ ना कुछ और बोल जाते हैं, गलती
1: है। इसीलिए तो मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैंने बोला इनको जो बोलना है बोलने दो, इनसे भिड़ना तो बड़ा खतरनाक है।
0: आप बचाव हो गया आपका,
1: महंगा ही पड़ेगा, छोड़ दो इनको, मारने दो सिक्सर, बोलो वाह वाह वेल डन, छोड़ दो भाई।
0: लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने सवाल पूछे, आप ऑडियंस को पूछना चाहता हूँ, चाहे वो TV पे देख रहे हैं चाहे आप लाइव हैं, आपको आज वाली इंटरव्यू में कुछ तो अलग से लगाना, कुछ तो बात कुछ अलग से हो रही है ना, कि नहीं तो सवाल
1: आप अपने सवाल आप को पहले फिक्स होते हैं, मुझे मार्क दे रहे हो।
0: नहीं नहीं नहीं, तो क्या होता है कि सवाल भी फिक्स होते हैं, वो वही फॉर्मल सा सवाल फॉर्मल सा जवाब, बोर हो जाते हैं सब लोग। लेकिन अब हमारे में केमिस्ट्री हमारी ऐसी है कि जो इन्होंने पूछा मैं उसके दो दो तीन तीन जवाब दिए, इन्होंने भी काउंटर किया, मुझे भी अच्छा लगा कि कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने पहले मुझे दो दिन पहले भेज दिया हो फिर मैं उसकी प्रिपरेशन, स्पॉन्टेनियस जो बात दिल से निकलती है वो असर।
1: सवाल तो ना इन्होंने पूछे ना हमने भेजे ना हम भेजते हैं, इनमें से किसी ने पूछे भी नहीं, और ऐसे सवाल अगर पूछते पहले बता दिए तो क्या पता आते भी नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, तो इन्होंने सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए। तो पद्मजा जोशी हमारी मैनेजिंग एडिटर सवाल लेंगी। पद्मजा,
2: आपका ये EVM से जो झगड़ा है कब खत्म होगा? अब उन्होंने उसी EVM ने आपको पंजाब में जिताया, दिल्ली में बार बार जिताया, गुजरात में आपके MLA हैं, गोवा में आपके MLA हैं, और तो और छोड़िए, कश्मीर में भी एक एमएलए आपका आ गया है उसी ईवीएम से चुन के, उसी कश्मीर जहां उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट थिंक ईवीएम में कोई खराबी है, किसी के पास प्रूफ है तो दिखा ले। वही ईवीएम आपको राज दर राज जिताता है, पर फिर आप कहते हैं कि ईवीएम की फिक्सिंग करके बीजेपी जीत।
0: देखो पता क्या है, पूरे देश में ईवीएम पर कई पार्टियों के सवाल हैं, पार्टियों को शक है, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए सभी को बुलाकर। एसआईआर पे शक है कि जी इतने जो नकली वोट हैं वो बनाए जा रहे हैं, असली वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक विंग क्यों बन जाता है? इलेक्शन कमीशन प्रो बीजेपी क्यों हो जाता है? नहीं जी ये तो ऐसे होगा, नहीं जी ये तो हम तो ऐसे, तो इससे शक हो जाता है। फिर अगर बीजेपी को कोई डाउट ही नहीं है, जब भी ईवीएम पर कोई सवाल कोई पैदा होता है तो बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है? वो कहे कि हाँ जी चेक करा लो, हाँ जी हमारे सामने चेक करवा लो, हम हमारे पास तो इतना बड़ा नेता है जिसके नाम से हम जा जिसकी लहर से हम जीत जाते हैं। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को ये कहता हूँ कि वो उन पर भी उनके काम पर भी शक हो गया है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो पहले ही थे, अब जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पर भी शक हो गया है। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी अगर बचानी है तो उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सभी पार्टियों को, अकेले हम नहीं, उसमें और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो शक करती हैं कि हमें इतने वोट तो यहाँ पढ़ने चाहिए थे, हमारा तो एक वोट भी नहीं निकला, कम से कम एजेंट ने तो वोट डाला होगा ना। तो इसलिए अगर ये कोई शक है तो इसको क्लियर करना चाहिए।
3: आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सरकार बना रहे हैं, अगले चुनाव में आप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ में ये सवाल एक पर्सपेक्टिव के साथ एक इमेज के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मुझे रामलीला मैदान की वो तस्वीर याद आती है जहाँ पर सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल साथ साथ बैठे थे, इंडिया अलायंस की शक्ति का वो प्रदर्शन था बीजेपी के अगेंस्ट। इंडिया अलायंस का आज का सच क्या है? और ख़ासकर तब अगर मैं ये सवाल आपसे इस सूरत में पूछूं, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पंजाब में चुनाव हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा, और ऐसे में इंडिया अलायंस क्या आपके लिए भी ज़रूरत नहीं जब आप यहाँ बैठकर कांग्रेस को तमाम क्रिटिसिज्म करते हैं?
0: इंडिया अलायंस में हम रहे हैं, लेकिन हमें मतलब हम या तो हम नहीं फिट बैठे या वो नहीं फिट बैठे, तो अब हम नेशनल पार्टी अलग से अपना हमारा एजेंडा हमारी विचारधारा और है, उनका शायद काम करने का तरीका और है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन दूसरी बात है कि आप कहेंगे अगर पंजाब हार गए, अगर तो फिर अगर होता है, लेकिन पंजाब में जितने हमने काम किए हैं, जितना पंजाब से हर रोज़ हमें फीडबैक आता है, पंजाब के लोग बहुत खुश हैं। पंजाब के लोग ये कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि हम ये झूठे पर्चे थाने में या ये वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी पुलिस की, इधर इधर ये कर दिया वो कर दिया, उससे हमें छुटकारा मिल गया, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमें अच्छा इलाज मिल रहा है और बिजली पानी फ्री है। पंजाबी जो हैं वो मतलब मौजें कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और पंजाब ने पहला हरा रंग का पत्ता जब पूरे देश में पार्टी लड़ी, चार एमपी जिनमें मैं भी था, चार एमपी 2014 में, उसके बाद 20 हमारे आए विपक्ष में पहली बार आए 17 में, एक एमपी जब फिर भी पार्टी इधर उधर थोड़ा बिखर गई थी तो संगरूर से फिर मैं जीता अकेला, उसके बाद 22 में बड़ा मार्जिन दिया। तो पंजाब जो है वो हमारी धरती गुरुओं पीरों फकीरों शायरों की धरती है, और नए इनकलाब को नई चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि पंजाबी हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे।
1: ख़त्म करने से पहले अगर वो जो कॉमेडियन भगवंत मान है जो पूरे रूरल पंजाब में हिट हुआ, अगर वो इस सरकार को देख रहा है तो सरकार पे कॉमेडी क्या करेगा वो?
0: सरकार को
1: हाँ, अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहेगा?
0: जे मैं देखा अपने बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, समा आपने खूब बांधा। अब आपके काम पर पंजाब की जनता का क्या एक्चुअल फाइनल का रिपोर्ट कार्ड है वो 2027 में पता चलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि आप हमें और मौका देंगे आपके पास आने का, इंटरव्यू करने का।
0: एनी टाइम, हाँ एनी टाइम, इलेक्शन के समय भी मिलेंगे। हाँ, उसमें वो आप गाड़ी में बैठ के करते हो ना इंटरव्यू, एक वो करेंगे,
1: वॉक तो टॉक करेंगे आपसे,
0: वॉक
1: मजा आएगा। नहीं पर एक बार फिर से भी आएंगे, एक
0: बार सबमिट करेंगे। हाँ, मर्जी हो, पंजाब आपका है। हाँ, पंजाब तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना हुआ है मेजबान, पंजाबी तो जहाँ दुनिया
4: सर,
0: कोई चांद पर भी अगर चले जाओगे तो पंजाबी एक आध मिल ही जाएगा आपको, तो पंजाबी तो पूरी दुनिया में मिलते हैं।
1: तो हम फिर से आएंगे पंजाब इलेक्शन से पहले, वॉक द टॉक भी करेंगे और पंजाब में एक बड़ा समिट भी करेंगे। लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, एक भी बार नहीं कहा ये मत पूछना वो मत पूछना, और जैसे सवाल आपने देखे देखा कि हर तरह का सवाल पूछा भी गया जिसका आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी, बेस्ट ऑफ लक करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
4: For generations, education in India was largely associated with stability. Secure marks, secure degrees, secure jobs. But our economy is changing rapidly. Increasingly, the country also needs problem solvers, innovators, people willing to build new ideas, rather than only seek existing opportunity.
5: Watch the full conversation only on NDTV.
6: Intense political activity in Delhi from Karnataka. Rahul Gandhi has now met Siddaramaiah, and these are the images that we are showing only on NDTV. Siddaramaiah meets Rahul Gandhi at Sonia Gandhi's residence. Both Siddaramaiah and son Yatindra have in fact met Rahul Gandhi, and those are the visuals on your screens, pictures on your screens there. After this meeting, Siddaramaiah all set to meet Congress Chief Mallikarjun Kharge as well. In fact, he's already met Mallikarjun Kharge too. Let's go straight across to Jayanendra on this. Jayanendra, of course, the crucial meetings there. Smooth power transition is what Congress High Command is looking at. Siddaramaiah has met Rahul Gandhi, also Mallikarjun Kharge. What more can you tell us?
7: So the first phase of transition is already completed after the resignation of Siddaramaiah. Now the focus is on phase two. That means oath of D.K. Shivakumar and the formation of D.K. Shivakumar government. And sources who know about the meeting between Rahul Gandhi and Siddaramaiah have told that there was a detailed meeting and several issues were discussed, primarily on about the new government and about the accommodation of leaders close to senior leaders close to Siddaramaiah. Siddaramaiah have demanded, according to sources, important portfolios. Also, it is not clear whether it was discussed or not, but Siddaramaiah camp is also eyeing on the post of state Congress president. Apart from the this issue, MPs and the two Rajya Sabha vacancies and few MLC vacancies were is believed to be have also discussed between Rahul Gandhi and Siddaramaiah. The meeting continued around half an hour. Sources have also informed that Sonia Gandhi also met Siddaramaiah, but that meeting was just a courtesy meeting. Siddaramaiah greeted Sonia Gandhi. Detailed meeting took place between Siddaramaiah and Rahul Gandhi. After meeting Rahul Gandhi, Siddaramaiah is now meeting Congress President Mallikarjun Kharge. That meeting is also important regarding the transition and leadership change in Karnataka, because Siddaramaiah have resigned very gracefully. But now, whether his supporters will get appropriate space in D.K. Shivakumar government, this is to be seen. And sources are claiming that to ensure this thing, Siddaramaiah have a flight to Delhi, and he is meeting top Congress leadership. As far as D.K. Shivakumar is concerned, he is expected to arrive at K.C. Venugopal's residence regarding again on the same to discuss same issues regarding the Congress Legislative Party meeting, oath, and most importantly his cabinet berth. So meetings regarding the phase two of leadership change in Karnataka is going on in Delhi. Siddaramaiah have met top leadership. Now it is time term of D.K. Shivakumar. He may meet K.C. Venugopal, and after that some other senior leaders also. And tomorrow Congress is planning to convene a legislative party meeting to elect D.K. Shivakumar as its leader.
6: Right, CLP cabinet berths being discussed in many of these crucial meetings. Stay on with us, Jayanendra. A historic power transfer in Karnataka has finally been sealed as state's longest serving chief minister Siddaramaiah steps down. Siddaramaiah, along with his son Yatindra, held an hour-long meeting with Rahul Gandhi at Sonia Gandhi's residence. Randeep Surjewala was also present in this meeting. After meeting Rahul Gandhi, Siddaramaiah held discussions with Mallikarjun Kharge. Minister K.J. George, Minister Priyank Kharge were also present during the meeting. DKS is also slated to meet party's high command. Governor has formally accepted the resignation of Siddaramaiah, clearing the way for Congress to begin the process of electing a new legislature party leader. Meanwhile, CLP meeting likely to happen tomorrow. All MLAs have been asked to come to Bengaluru tomorrow morning. Ahead of the meeting, supporters of DKS and Jarkiholi offered